सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा है। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

0: सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सबसे पहले ज्ञान ज्योति। जी हाँ, संत जन कहते हैं कि ईश्वर भक्ति करने के लिए और ईश्वर का प्रिय बनने के लिए कुछ योग्यताओं की ज़रूरत अवश्य होती है। केवल तिलक धारण करने से या माला हाथ में पकड़ने से या फिर घंटियाँ बजाने से प्रभु के प्रिय भक्त नहीं बना जा सकता। प्रभु के प्रिय भक्तों की श्रेणी में आने के लिए किसी भी व्यक्ति में विवेक, ज्ञान और विनम्रता का होना अति आवश्यक है। यही पाठ पढ़ाती है हमें आज की ये लघु कथा। पौराणिक काल में मुद्गल ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था विद्वान। एक दिन उन्होंने देखा कि समाज में विद्वानों, तपस्वियों और ऋषियों का बड़ा सम्मान होता है। उनके मन में भी आदर पाने की इच्छा जागी। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के ही वे वन में जाकर गणेश जी की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि उनके शरीर पर दीमकों ने बामी बना ली। उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर गणपति प्रसन्न तो हुए, किंतु वे उनके भीतर छिपे अहंकार और क्रोध को समाप्त किए बिना ज्ञान नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने वाहन मूषक राज को एक भयानक रूप में वहां भेजा। वह मूषक उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा। ऋषि पुत्र क्रोधित हो उठे और उस पर प्रहार करने दौड़े। तभी मूषक राज ने उन्हें अपनी पूंछ से हवा में उछाल दिया और कहा, तुम गणपति को पाना चाहते हो पर अभी तक क्रोध और अहंकार से मुक्त तो हो नहीं सके। ऋषि पुत्र पश्चाताप से भर उठे और मूषक राज से क्षमा मांगने लगे। तभी चतुर्भुजधारी भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर ऋषि पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें विवेक, ज्ञान और विनम्रता का वरदान दिया। आगे चलकर वे एक महान ज्ञानी ऋषि बने। जी हाँ, भगवान की कृपा तभी मिलती है जब हमारे अंदर अहंकार का नाश होता है और भक्त बनने का ये जो हमारे मन में गर्व होने लगता है ना, जो जिसे हम ये कह सकते हैं कि मिथ्या गर्व हम करते हैं। प्रभु की कृपा तो तभी मिलती है जब विवेक, विनम्रता और ज्ञान का उद्गम हमारे भीतर होता है। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं कि भगवान हमें भी अपने भक्तों की श्रेणी में रखें और नमन करते हैं विघ्नहर्ता श्री गणपति जी महाराज के चरणों में।

जी हाँ, गणपति की सेवा मंगलमेवा, सेवा से सब विघ्न टरें। जी हाँ, हमारी तो यही मन में भावना होनी चाहिए कि हमें बस प्रभु का स्मरण करना है, बाकी सब काम प्रभु के हवाले कर देने चाहिए। और प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, हम कुछ नहीं कह रहे, परंतु आप फिर भी सब समझ रहे हैं। ना मेरे होंठ हिले, ना शब्द निकले, फिर भी दिल की हर बात आप तक पहुंच रही है। मेरी खामोशी ही मेरी प्रार्थना है, और मेरा विश्वास ही मेरी आवाज़ है। हे मेरे प्रभु, बस इतना आशीर्वाद देना कि हर हाल में आपका साथ बना रहे। और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा है ना, वो दौड़े दौड़े चले आए हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए।

जी हाँ, संत जन कहते हैं कि जिस दिन हमारा मन ये मान लेना कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, उसी दिन डर, चिंता और बेचैनी अपना असर खोने लगती है। इसलिए चिंताओं को त्याग कर परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं ना, तो सब ठीक ही होगा।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। इसी के साथ अब आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब हम आपको अवगत करवा देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों तथा उनके प्रसारण समय से। सबसे पहले जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 7:05 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। लोक संसार कार्यक्रम का समय रहेगा 7:35। हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिएगा 8:30 पर। प्रातः 10:05 पर हमारी आज की लघु वार्ता का विषय रहेगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 10:15 पर समय रहेगा कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर का। 10:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक रंग। दिन में 12:00 कार्यक्रम सुगम संगीत तथा 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। शाम 5:10 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम भजन संध्या। युव मंच कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30

0: मिनट सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनिएगा 6:05 पर, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी शाम 6:30 पर तथा 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम रेड़ियां दी तान। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम खेल जगत तथा 10:30 पर चांदनी रातें कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की समय सारिणी इस प्रकार है। प्रातः 8:35 से लेकर 9:17 तक, 9:30 से 10 बजे तक, दिन में 11:05 से 12 बजे तक, 1 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2:30 से लेकर 3 बजे तक, 3:10 से लेकर 4 बजे तक, रात्रि 8 बजे से लेकर 8:45 तक तथा 9:15 से लेकर रात्रि 10 बजे तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले समाचारों व कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार से है। प्रातः 6:55 पर संस्कृत, 7 बजे हिंदी समाचार, 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, प्रातः 10 बजे हिंदी समाचार, दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, शाम 5 बजे तथा 7 बजे हिंदी समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9 तथा रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 पर दिन में 11 बजे तथा 3 बजे प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर जिले की चिट्ठी अथवा सामयिक चर्चा, शाम 6 बजे तथा 7:45 पर प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं, थोड़ी ही देर में संस्कृत तथा 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्रयात्रायाः पंचमं अंतिमं प्रचरणं सफलतया संपाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुञ्च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां पशुपालकानां मत्स्यपालकानां कृषिवैज्ञानिकानां श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7वादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं 6वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को

0: मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:06 और पूरे 23 सेकंड्स हो चुके हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा, और सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी श्रोताओं, आज भी हमारे जानकारियों के पिटारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, और साथ ही आज हम आपको कुछ गीत भी सुनवाएंगे आपके मनोरंजन के लिए। और कार्यक्रम की रिवायत के अनुसार आज के इस कार्यक्रम का भी आरंभ हम कर रहे हैं आज के सुविचार से। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि मत सोचो जिंदगी बोझ है, ये तो बस धड़कनों का साज है। हर सुबह एक नई उम्मीद है, हर शाम कोई राज है। समस्याएं तो आएंगी हर रोज, जैसे लहरें किनारों से टकराती हैं, पर हिम्मत वो दीपक है जो आंधियों में भी जगमगाती है। थोड़ा हंस लो, थोड़ा जी लो, ये पल फिर लौट कर कहाँ आते हैं। खुश रहो क्योंकि यही सच है, जिंदगी मुस्कुराने वालों के संग मुस्कुराती है।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: जी श्रोताओं, इस म्यूज़िकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो गीत हमने आपको सुनवाया, इसे हमने लिया था फिल्म गोलमाल से और गायक कलाकार थे किशोर कुमार। जी अब कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में वक्त है जानकारियों का सिलसिला शुरू करने का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के इतिहास की।

जी, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार मई 21 किसी वर्ष में दिन संख्या 141 है। भारत और विश्व इतिहास में 21 मई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही हम आपको बताएंगे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों के बारे में। बात होगी उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। साथ ही हम आपको बताएंगे आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में। सबसे पहले जानकारी 21 मई के दिन इतिहास में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। जी श्रोताओ, इतिहास के पन्नों को अगर खोलकर देखा जाए और बात की जाए सन 1216 की, तो फ्रांस के प्रिंस लुईस ने इंग्लैंड में 21 मई के दिन प्रवेश किया था। सन 1840 में न्यूजीलैंड में ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा स्वीकार किया गया था, यानी न्यूजीलैंड ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन गया था। यूएस नेशन लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 21 मई सन 1881 में। पहली हॉरर फिल्म शिकागो में सन 1908 को बनाई गई थी। यूएसएसआर ने सन 1970 में न्यूक्लियर टेस्ट भी 21 मई के दिन ही किया था। पियरे मोरो सन 1981 में फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। दक्षिणी यमन द्वारा सन 1994 में उत्तरी यमन से अलग होने की घोषणा की थी। प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने सन 1996 में विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की। बत्तीस वर्षों तक लगातार इंडोनेशिया पर शासन करने वाले राष्ट्रपति सुहांत्रो का सन 1998 में 21 मई के दिन त्याग पत्र स्वीकार किया गया था। विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को सन 2003 में जिनेवा में मंजूरी दी थी।

जापान एरोस्पेस एक्सेलरेशन एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष यान IKAROS को 21 मई 2015 को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से HIIA रॉकेट पर सवार किया था। ये इंटर प्लेनेटरी स्पेस में सौर सेल तकनीक का प्रदर्शन करने वाला पहला सफल विमान था। सन 2014 में राष्ट्रीय सितंबर 11 संग्रहालय 21 मई सन 2014 को जनता के लिए खोला गया, जो 2001 में आतंकवादी समूह अलकायदा द्वारा 9/11 के हमलों की याद दिलाता है। जी श्रोताओ, तो ये तो थी बात उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो इतिहास में घटी थी 21 मई के दिन। अब अगर बात करें 21 मई के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों की, तो अमेरिकी न्यायाधीश जेम्स लोपेज वाटरसन का जन्म सन 1922 में आज ही के दिन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मेलकम फ्रेजर का जन्म सन 1930 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी का जन्म सन 1931 में 21 मई के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर का जन्म सन 1960 में हुआ था। मशहूर निर्देशक स्क्रिप्ट लेखक आदित्य चोपड़ा का जन्म सन 1971 में हुआ था। जी श्रोताओं, और 21 मई के दिन जो महान हस्तियां इस दुनिया को अलविदा कह गई थी उनकी अगर हम बात करें, तो गामा पहलवान का निधन सन 1960 में हुआ था। और शायद ही कोई ऐसा भारतीय खेल प्रेमी हो जिसने रुस्तमे जमा पहलवान का नाम ना सुना हो। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र और भारत के 9वें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का निधन सन 1991 में हुआ था। जी श्रोताओं, और आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों की अगर हम बात करें, तो आज अंतर्राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया जा रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जा रहा है। संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस भी मनाया जा रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर बलिदान दिवस भी मनाया जा रहा है। जी श्रोताओं, तो ये तो थी जानकारी आज के इतिहास की। अब कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में एक बार फिर से रुख करते हैं संगीत की तरफ। जी श्रोताओं, यादों की बारात फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओ, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में वक्त है आपको कुछ ताजा तरीन खबरों की जानकारी देने का। जी हाँ, पहली खबर के अनुसार अमरनाथ यात्रा की बात हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, 3.6 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यात्रा मार्ग पर 12 फीट तक बर्फ है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा की तैयारी जारी है। जी हाँ, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.6 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 5 से 30 लोगों के समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में रजिस्ट्रेशन पिछले कल यानी बुधवार को बंद हो गए। इससे कम लोगों के समूह या अकेले आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन यात्रा के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेंगे, बशर्ते स्लॉट खाली हो। इस बार सभी संवेदनशील हिस्सों और आपदा की आशंका वाले स्थानों को तीर्थयात्रियों के लिए नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। बालटाल और नुनवान रास्तों के दोनों ट्रैकों को चौड़ा किया गया है। पुलों को भी बेहतर बनाया गया है। बादल फटने और अचानक बाढ़ की घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर कैंप नहीं लगाए जाएंगे। इस बार बेस कैंप में टेंट की जगह प्री फैब्रिकेटेड और फाइबर स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को आरामदायक और आधुनिक आवास जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। ये स्ट्रक्चर तापमान में अचानक गिरावट और बारिश से निपटने में कारगर रहेंगे। हर इमारत में 48 कमरे हैं। हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम है। गर्म ठंडे पानी की सुविधाएं होंगी। हर इमारत में पेंट्री भी बनाई जा रही है। इन जगहों पर 3 साल पहले काम शुरू हुआ था जो अब पूरा होने वाला है।

सूर्यास्त रॉकेट ने ओडिशा में साधा सटीक निशाना। जी हां, भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बड़ी मजबूती देते हुए पुणे स्थित निजी कंपनी निबे लिमिटेड ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सूर्यास्त लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इन परीक्षणों में भारतीय सेना के लिए विकसित 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाले दो अत्याधुनिक रॉकेटों ने बेहद सटीक निशाना साधकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। 150 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट ने 1.5 मीटर की वृत्ताकार त्रुटि संभाव्यता हासिल की, जबकि 300 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण ने 2 मीटर CEP दर्ज की। रक्षा क्षेत्र में CEP को किसी भी मिसाइल या रॉकेट की सटीकता का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि लक्ष्य के आसपास निर्धारित दायरे में आधे प्रक्षेप्य गिरने की संभावना रहती है। इतनी कम CEP लंबी दूरी के गहरे स्ट्राइक अभियानों में इस प्रणाली की घातक सटीकता को दर्शाती है। एक अन्य खबर के अनुसार भारतीय मूल के दो वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जी हां, दक्षिण अफ्रीका के दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मंगलवार को प्रिटोरिया में प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन डेढ़ा को ऑर्डर ऑफ मांपू गुब्बे प्रदान किया है। प्रोफेसर करीम को यह सम्मान कोविड-19 के दौरान अभूतपूर्व अनुसंधान व नेतृत्व के लिए मिला है। प्रोफेसर डेढ़ा को टीवी और दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण के प्रबंधन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है।

अब कुछ खेल खबरों की अगर हम बात करें तो भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी। हॉकी खिलाड़ी के मुकाबले 15% ही फिट हैं क्रिकेटर, विराट ने माना ये कड़वा सत्य। शटलर लक्ष्य प्रणय बाहर, मालविका और अस्मिता जीती। घरेलू सत्र 11 अक्टूबर से शुरू होंगे रणजी ट्रॉफी के। बीसीसीआई ने 2026-27 के घरेलू सत्र का कार्यक्रम पिछले कल घोषित किया। 23 अगस्त से दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत होगी। रणजी ट्रॉफी फिर से दो चरणों में खेली जाएगी, जिसका पहला चरण 11 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक और दूसरा चरण 17 जनवरी से 3 मार्च 2027 तक चलेगा।

और आज के आईपीएल की अगर हम बात करें तो आज चेन्नई अगर एक रन से जीती तो दिल्ली को 200 से ज़्यादा रन से जीतना होगा। जी हाँ, आईपीएल 19 में प्लेऑफ के लिए एक स्थान, 5 टीमें रेस में, राजस्थान की जीत खत्म कर देगी अन्य 4 की उम्मीदें। आरसीबी, गुजरात, हैदराबाद पहले ही पहुंच चुके हैं। एक अन्य खेल खबर के अनुसार आर्सेनल 22 साल बाद चैंपियन। जी श्रोताओं, तो ये तो थी कुछ खेल खबरों की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई। अब प्रातः के 7:35 हो रहे हैं और ये वक्त है आज के लोक संसार कार्यक्रम का। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में भी हिमाचल से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, साथ ही कुछ ज़िला हमीरपुर से जुड़ी खबरों की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ प्यारे प्यारे लोकगीत। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई जानकारी की। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल देवी और देवताओं की भूमि यानी देव भूमि के नाम से जाना जाता है, तो आज हम हिमाचल के कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठों की बात करने वाले हैं।

जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान शिव जब माता सती के शरीर को कंधे पर रखकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें कई हिस्सों में बांट दिया था ताकि शिव का कोई भी खतरा, यानी शिव के क्रोध का खतरा दुनिया के ऊपर ना मंडराए और वे शांत हो जाएं। इसी माता सती के शरीर के 52 भाग जहाँ जहाँ गिरे थे सभी स्थान शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुए। बात करें हिमाचल के नैना देवी जी के शक्तिपीठ की, तो यहाँ पर माता सती के नयन गिरे थे। ये शक्तिपीठ बिलासपुर में स्थित है और ऊना के चिंतपूर्णी में माता के चरण व कांगड़ा के ज्वालाजी में जीभ गिरने से इन पावन स्थलों को शक्तिपीठ के रूप में ख्याति मिली।

बात करें माँ नैना देवी शक्तिपीठ की, तो इस मंदिर से गोविंद सागर, आनंदपुर साहिब सैकड़ों मील दूर के दृश्य भी मनमोहक लगते हैं। सच्चे मन से यहाँ नतमस्तक होने वाले सभी भक्त कभी निराश नहीं लौटते। हैरानी की बात यह है कि कोई बुजुर्ग, दिव्यांग या बच्चे तक भी इस मंदिर तक पैदल चलकर तथा दंडवत होकर घंटों तक चढ़ाई चढ़कर माता के द्वार तक पहुंचते हैं और नैनों के रोग यानी आँखों के रोग ठीक होने पर भक्त यहाँ चांदी के नयन दल चढ़ाते हैं। और जिला ऊना के भरवाई के पास माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ है। इन्हें चिंता दूर करने तथा कामना पूरी करने वाली देवी माना जाता है। यहाँ भक्तों की दृढ़ आस्था है क्योंकि उनकी कामना पूरी होने पर भक्तों के चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई देती है। इन शक्तिपीठों पर हर दिन भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। कुछ समय पहले एक भक्त माँ चिंतपूर्णी मंदिर पहुँचा। पूजा करने के पश्चात उसने माँ के चरणों में 25 तोले से बना मुकुट टीका यहाँ चढ़ाया, लेकिन किसी को भी अपना नाम तक नहीं बताया। वह बोला कि माँ तो मेरा नाम जानती है जिसने मेरी कामना पूरी की है। वह बड़ी ही दयालु है। इस मुकुट टीके को चढ़ाने के बाद माँ के चरणों में मस्तक नवाकर वह भक्त अपनी राह चल दिया। और इससे पहले भी कई बार इन शक्तिपीठों पर सोने चांदी के छत्र चढ़ाने वाले भक्तों की किसी को भी भनक तक नहीं लग पाई थी। जब सायंकाल में चढ़ावे की गिनती हो रही थी तभी इन छत्रों का पता चला था। इसी से इन शक्तिपीठों की शक्ति व भक्तों की गहरी आस्था का पता चलता है, जो अद्भुत है। ज्वाला जी शक्तिपीठ में भी ज्योतियां बिना बाती तेल दिन रात जलती रहती हैं। कहते हैं कि यहाँ सम्राट अकबर भी परीक्षा लेने आया था। ज्योति को कई तरह से शांत करने का उसने हठ किया लेकिन वह निराश हो गया। तो दिल्ली से नंगे पांव चलकर वह भी सोने का छत्र चढ़ाने के लिए लाया था, लेकिन माँ ने उसकी ये भेंट स्वीकार नहीं की क्योंकि घमंड, अकड़, अहंकार इस दरबार पर धरे के धरे रह जाते हैं। कहते हैं कि सम्राट अकबर का वह छत्र किसी अन्य हल्की धातु में बदल गया जो आज भी ज्वालाजी मंदिर में रखा हुआ है। यह देखकर सम्राट अकबर रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, क्योंकि वह इस ज्योति की शक्ति को जान चुका था। उसका अहंकार भी टूट चुका था। चढ़ाने वाली वस्तु की कीमत मायने नहीं रखती, बल्कि उसके मन के भाव भी सच्चे होने चाहिए, तभी भेंट स्वीकार होती है। यहाँ तो फूल भी चढ़ाने वाले तर जाते हैं, खाली झोली भर कर ले जाते हैं। यदि मन साफ हो, कोई विकार ना हो, तो इन शक्तिपीठों से कोई भी सवाली मायूस या निराश नहीं लौटता।

0: से क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी श्रोताओ, इस लोकगीत और विज्ञापनों के बाद अब कार्यक्रम लोक संसार में वक्त है आपको जिला हमीरपुर से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरों की जानकारी देने का। सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो जायका टीम ने टोक्यो के वरिष्ठ वास्तुकार से की साइट प्लान पर चर्चा। जी हां, जोल सप्पड़ में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण को लेकर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की 6 सदस्यीय टीम ने पिछले कल यानी बुधवार को मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर रमेश भारती के साथ बैठक की। इस दौरान टोक्यो से वरिष्ठ वास्तुकार भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े और साइट प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार ड्राइंग को भी वरिष्ठ वास्तुकार के साथ साझा किया गया ताकि उसमें संभावित कमियों और सुधार के बिंदुओं का आकलन किया जा सके। इसके अलावा कैंसर अस्पताल में लगने वाली आधुनिक मशीनरी और तकनीकी सुविधाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रमेश भारती ने बताया कि ये अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा जिससे क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा में नया बदलाव, अब घर स्कूल दोनों जगह सीखेंगे नौनिहाल। जी हां, जिला हमीरपुर के 402 प्राथमिक स्कूलों में अब नौनिहाल केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि घर पर भी खेल खेल में नई गतिविधियां सीखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा को अधिक रोचक, व्यवहारिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी स्तर पर गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में गतिविधि प्लानर तैयार किए जाएंगे और बच्चों की माताओं को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा ताकि घर का वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके।

मलेरिया की रोकथाम के लिए बुखार के हर मरीज की होगी जांच। जी हाँ, मलेरिया की रोकथाम और बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग के सभी बीएमओ को निर्देश जारी करते हुए बुखार के प्रत्येक मरीज की मलेरिया की पुष्टि से मलेरिया की दृष्टि से जांच सुनिश्चित करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की स्लाइड बनाकर और माइक्रोस्कोप के माध्यम से रक्त परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। HPV का टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। जी हाँ, ये कहना है ज़िला हमीरपुर की उपायुक्त श्रीमती गंधर्वा राठौर का। उन्होंने ज़िले के सभी उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रमुखों और अन्य शिक्षकों से अपील की है कि वे HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन से छूटी 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी लड़कियों को HPV वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इस टीके के बारे में लड़कियों या उनके अभिभावकों में अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो तुरंत उनका निवारण किया जाना चाहिए। अगर उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो स्वास्थ्य विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है। डिग्री कॉलेज हमीरपुर में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उपायुक्त ने ये अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि HPV वैक्सीनेशन में भी हमीरपुर को अव्वल बनाने में शिक्षक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षकों का बच्चों के साथ लगातार संपर्क एवं संवाद रहता है, बच्चे शिक्षकों का अनुसरण भी करते हैं। शिक्षकों से भी आग्रह है कि वे HPV वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया में फैल रही भ्रामक सूचनाओं की बजाय बच्चों तक सही जानकारी

एक अन्य खबर के अनुसार तेज धूप के बीच हाथ में पर्ची लेकर दवाइयों की उम्मीद में भटकते रहे मरीज। जी हां, केमिस्ट ड्रगिस्ट की एक दिवसीय हड़ताल का असर सीधे मरीजों पर दिखा है। मेडिकल स्टोर पर ताले लटके रहे, जबकि मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी में भी ज़रूरी दवाइयां नहीं मिली। तेज धूप, हाथ में पर्ची और दवाइयों की उम्मीद लेकर मरीज दिन भर भटकते रहे। और ये जो हड़ताल है, ये ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में की गई है। राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर सभी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट ने स्टोर बंद रखे और ज़िले में करीब 300 मेडिकल स्टोर हैं। ज़िला ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि दवाइयों की अवैध व अनियमित ऑनलाइन बिक्री हो रही है। बिना वैध एवं सत्यापित चिकित्सीय पर्चे के दवाओं की बिक्री एवं होम डिलीवरी की जा रही है।

जी श्रोताओं, और ज़िला हमीरपुर से जुड़ी इन खबरों की जानकारी के बाद अब कार्यक्रम लोक संसार में वक्त है आपको एक लोकगीत सुनवाने का। आइए सुनते हैं हरदेई और मलकेश वर्मा का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: पया बरखादा छल्लाड़िए। देखिए, तेज़ गर्मी में बारिश की बूंदों के एहसास को दिलाता है ये लोकगीत अभी हमने सुना। और इसी के साथ आज का लोक संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
4: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
9: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
4: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
10: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने जो TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कांटेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है समुना तुर्मी।
4: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
11: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
4: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
12: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
13: More from our correspondent.
6: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to Multilateralism and Global Food Security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
13: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Parganas district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of 6 candidates are in the fray, including 2 independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's candidate is Dibangshu Panda. Congress has fielded Abdul Razak Molla, while the CPIM has fielded Shambhu Nath Kurmi. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha for the latest update. Kalyan, what's the latest update that you have?
14: Sarah, the latest update is the voting is going on peacefully and no reports of violence or any untoward incident came in. And that this candidate Jahangir Khan declared that he would not contest in the election. And in this situation, the fight is among the candidates of BJP, PMC, BJP, CPIM and Congress. We can expect that peaceful voting trend can continue throughout the day. Sarah.
13: Right. Thank you so much, Kalyan, for that update. Moving on, West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force, BSF, for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More from our correspondent.
15: Yesterday, at the State Secretariat Navarno, Chief Minister Shubhendu Adhikari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions, and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000-kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers. 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF directly

0: week.
1: हिमाचल डायरी के आज के अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो सरकारी CBSE स्कूलों में इसी सत्र से 9वीं का नया पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों को 9वीं में अब नया सिलेबस पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से देश भर में 9वीं कक्षा के लिए संशोधित पाठ्यक्रम लागू किया है। सोलन में 3 जून को जुटेंगे प्रदेश भर के बाल वैज्ञानिक। जी हां, प्रदेश के बाल वैज्ञानिक 3 जून को अपने विज्ञान के मॉडलों के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। SCERT सोलन में राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक कार्यक्रम प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 43 बाल वैज्ञानिक भाग लेंगे। सेट के लिए ई एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 7 को। जी हां, राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 के लिए ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा है। परीक्षा का आयोजन 7 जून को किया जाएगा। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला पेपर पूर्वाह्न 11 से दोपहर 12 बजे तक होगा। इसके लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 तक होगा। अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। इसके तहत पेपर 1 के लिए सुबह 10:30 बजे और पेपर 2 के लिए दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य होगा। धर्मशाला में पहली बार पहुंचेगी IPL ट्रॉफी। जी हां, IPL के पहले प्लेऑफ धर्मशाला में होने वाला मुकाबला ऐतिहासिक होगा। धर्मशाला स्टेडियम में पहली बार खेले जाने वाले पहले क्वालिफायर मुकाबले के दौरान IPL की चमचमाती ट्रॉफी भी स्टेडियम में विशेष मंच पर स्थापित की जाएगी। प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि पहली बार धर्मशाला में IPL का क्वालिफायर मुकाबला खेला जा रहा है। क्वालिफायर मैच के दौरान IPL ट्रॉफी भी स्टेडियम में रखी जाएगी, जो दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों में उत्साह भरती नजर आएगी। जी हां, ये कहना है अरुण धूमल, चेयरमैन IPL का। साथ ही 26 मई को धर्मशाला में होने वाले IPL क्वालिफायर 1 मुकाबले को लेकर टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है। पिछले कल यानी बुधवार को शुरू हुई एक्सक्लूसिव टिकट सेल फिलहाल केवल क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ही उपलब्ध है। ये विशेष टिकट बिक्री बुधवार शाम 7 बजे तक लाइव रहेगी। धर्मशाला में होने वाले क्वालिफायर 1 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे सस्ता टिकट ₹2,750 का है। वहीं आम लोगों के लिए जनरल टिकट सेल 21 मई को शाम 8 बजे के बाद शुरू होगी। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे तक मौसम साफ, गर्म और शुष्क बना रहेगा। वहीं मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी के निचले इलाकों में लू चलने की संभावना है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। हिमाचल डायरी के आज के अंक में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:35 हुए हैं, अब से लेकर 9:17 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आए।
1: बंडी और बबली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, गुलजार की बोल थे, शंकर एहसान लॉय की तर्ज थी, शंकर महादेवन, सौम्या राय और साथियों की ये आवाजें आपने सुनी इस गीत में।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
5: शुक्रिया, शुक्रिया।
4: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें सुनिधि चौहान, उज्जैनी मुखर्जी, नीलाद्री देवनाथ और साथियों की थी। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का, ये लिया जाए बहुत छोटा सा ब्रेक।

ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन, रीना गिलबर्ट, विद्या गोपाल और ऐशिका सिक्का की आवाज़ों में आप एनिमी फिल्म का गीत सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों, आज इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना, चाय के उत्पादन को बढ़ावा देना और इसके साथ जुड़े किसानों और श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर कार्यस्थिति और कार्यस्थलों के प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों, अलसाई सुबह हो या काम की थकान हो या फिर सुकून भरी शाम, चाहे अकेले हो, परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ, चाय एक पेय पदार्थ नहीं है बल्कि ये हमारे अपनेपन का, बातचीत की मधुरता का और सुकून का प्रतीक है। चाय पीना केवल स्वाद या आदत नहीं, ये भावनाओं के जुड़ाव का भी हिस्सा है। सुनते हैं अब ये गीत।

चाय के बड़े सुंदर रंग हैं और कई रंग हैं। लोगों की अपनी अपनी पसंद है, कभी ब्लैक टी अदरक वाली चाय और कभी कुल्हड़ वाली चाय। इन सब की अलग अलग मिठास है। कुल्हड़ वाली चाय तो हमारे सफ़र को ही यादगार बना देती है ना। शायद यही वजह है कि चाय हमारे दैनिक जीवन का सबसे लोकप्रिय हिस्सा बन गई है। बहरहाल, अभी जो गीत आप सुन रहे थे, इसे हमने सौतन फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें थी। सावन कुमार ने इस गीत को लिखा था, उषा खन्ना ने इस गीत की धुन बनाई थी। और अब

दर्शन रावल और जोनिता गांधी की आवाजों में धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली और साथियों ने इस गीत को संगीत से संवारा था। इसी गीत के बाद आइए एक बहुत छोटा सा ब्रेक फिर से लिया जाए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।

फिर से आप सभी का बहुत स्वागत चित्रलोक कार्यक्रम में। पुष्पा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, जावेद अली की आवाज है।

दोस्तों, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने वीर ज़ारा, धूम, श्रृंखला, चक दे इंडिया, एक था टाइगर और बंटी बब्बी जैसे फिल्मों का लेखन और निर्माण किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा पर, और सुनते हैं आप ये गीत। आपको ये भी याद दिला दें कि ये आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा सुबह और रात 9:30 पर।

0: रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाज़ें थी, जयदीप साहनी के बोल थे और सलीम सुलेमान की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ऋत्विक तलाशिलकर और साथियों की आवाज़ों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर प्रातः के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: 10 लाख
2: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
3: 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
2: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
3: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दे रही है राज्य सरकार, भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी करने का लगाया आरोप। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज सातवां दिन। नगर निगम प्रशासन ने 41 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमता, नवाचार व स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया है। धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित ना रहें, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब प्रदेश के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है, ताकि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है, ताकि बच्चों को अपने ही क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी की, जिससे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित

0: किया गया है। उधर कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 26 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है।
1: पूरे जिले भर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा। बड़ा बंगाल में भी इस बार एक हम पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा पंचायत का चुनाव गर्मियों में हो रहा है और काफ़ी लोग बड़ा बंगाल में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो लोग भी अपने मत के उपयोग के अधिकार से वंचित ना रहे। इस दृष्टि से ये मामला माननीय आयोग के समक्ष रखा गया था और माननीय आयोग ने निर्देश दिया कि हमने वहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करना है।
0: देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की स्वीकृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच हड़ताल पर बैठे सहायक कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 41 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को पत्र जारी कर 270 आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने इस कार्रवाई को कर्मचारियों के साथ धोखा करार दिया है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते कल ऊना में सर्वाधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के मैदानी जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। प्रदेश में अप्रैल से सितंबर तक मिलने वाला लुंगड़ू अपने विशेष औषधीय गुणों, अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण विशेष महत्व रखता है। इसे कई क्षेत्रों में लिंगड़ तथा खसरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डिप्लाजियम मैक्सिमम है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता के अनुसार ये पौधा केवल एक मौसमी सब्जी नहीं बल्कि पहाड़ी संस्कृति, परंपरा और खान पान की जीवंत पहचान है।
2: अपने औषधीय गुणों, अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण विशेष महत्व रखता है। इसे कई क्षेत्रों में लिंगड़ तथा खसरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, फोलिक एसिड और फाइबर से भरपूर यह पौधा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। लुंगड़ू केवल स्वाद और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहाड़ी लोगों के लिए अतिरिक्त आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन है। आज लुंगड़ू का मदरा भी कांगड़ी धाम और विभिन्न सामाजिक समारोहों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किया गया इसका अचार भी लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। हिमाचल की वादियों में उगने वाला लुंगड़ू सचमुच प्रकृति का ऐसा उपहार है जो स्वाद, स्वास्थ्य, संस्कृति और आजीविका चारों को एक साथ जोड़ता है। प्रकृति का यह अनमोल उपहार न केवल हिमाचल की पारंपरिक विरासत को जीवित रखे हुए है, बल्कि पहाड़ी लोगों की मेहनत, संस्कृति और आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी भी बयां करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: शिमला जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा जिले के शिलारू में 24 मई को एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। संघ के महासचिव सीपी मेहता ने बताया कि इनमें अंडर 20 आयु वर्ग के पुरुष व महिला खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से समय पर पंजीकरण करवाने की अपील की है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, विजिलेंस को आरटीआई की दायरे से बाहर करने की अधिसूचना पर रोक। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, हिमाचल के कई जिलों में ड्राई होने लगे पेट्रोल पंप। मुख्यमंत्री के हवाले से हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है, भाजपा का फोकस संस्थान खोलना, हमारा गुणात्मक शिक्षा। हिमाचल एंट्री टैक्स के खिलाफ 1 जून को 55 एग्जिट पॉइंट 4 घंटे रहेंगे जाम, शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है, संघर्षकारी संगठनों ने जारी किया रेसिप्रोकल टैक्स ड्राफ्ट। दैनिक जागरण की एक खबर है, मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में सरकार व संजय गुप्ता को नोटिस। मौसम पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, ऊना में 44 डिग्री और शिमला में 30 डिग्री के साथ इस सीजन के सबसे गर्म दिन, कल से बारिश संभव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दे रही है राज्य सरकार, भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज सातवां दिन, नगर निगम प्रशासन ने 41 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं, अब से लेकर 10 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
5: कमाल साहब कह रहे थे, खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
4: संगीतकार खयाम।
5: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम न

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की

0: अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
1: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: की शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित एक था

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना। एक खाम

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक वीसी के आईयूएमएल सीपीआई सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारी आज की लघु वार्ता, जिसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस।

जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे हर साल 21 मई को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 21 मई सन 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आतंकवादी हमले, जिसे आत्मघाती बम विस्फोट भी कहा गया, में हत्या कर दी गई थी। उनकी याद में और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इस दिन को चुना गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों में मानवता के प्रति प्रेम, शांति और एकता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर रखना है। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद आज के समय में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। सरल शब्दों में अगर कहें तो अपने किसी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आम लोगों के मन में डर पैदा करना और हिंसा का सहारा लेना ही आतंकवाद है। जो व्यक्ति या समूह इस रास्ते को चुनता है उसे आतंकवादी कहा जाता है। इनका मुख्य मकसद कानून व्यवस्था को ठप करना, बेकसूर लोगों की जान लेना और समाज में अस्थिरता पैदा करना होता है। दोस्तों, आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या देश नहीं होता। इसका एकमात्र जरिया हिंसा और एकमात्र लक्ष्य डर फैलाना होता है। आतंकवाद के दुष्प्रभावों की अगर हम बात करें तो आतंकवाद के परिणाम किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे देश और दुनिया को प्रभावित करते हैं। मासूम जानों का नुकसान इसका सबसे दर्दनाक असर है, क्योंकि इसमें उन बेकसूर नागरिकों की जान चली जाती है जिनका किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार तो कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। जी हाँ, इससे भय और मानसिक तनाव का माहौल हर समय समाज में बन जाता है, जिससे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और आपसी भरोसा कम होने लगता है। आतंकवाद से होने वाले आर्थिक नुकसानों की अगर हम बात करें तो आतंकवादी हमलों से देश की संपत्ति, जिसमें इमारतें, सार्वजनिक परिवहन आदि नष्ट होती है। देश का एक बहुत बड़ा बजट विकास कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की बजाय सुरक्षा व हथियारों पर खर्च करना पड़ता है। आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग भी ठप हो जाता है और विदेशी निवेश भी रुक जाता है। आतंकवाद अक्सर समाज में अलग अलग समुदायों के बीच नफरत और अविश्वास की दीवार खड़ी कर देता है, जिससे देश की आंतरिक एकता को खतरा पहुंचता है। हिंसा के इस माहौल में लोगों को जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और शांति से रहने का मौलिक अधिकार छिन जाता है। अब बात आती है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। देखिए, आतंकवाद को सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं, बल्कि एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल रणनीति के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले तो आता है इसके अंतर्गत कड़े कानून और मजबूत इंटेलिजेंस। जी हाँ, आतंकवादी और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कड़े से कड़े कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा खुफिया तंत्र, जिसे इंटेलिजेंस शेयरिंग कहा जाता है,
देश की सुरक्षा एजेंसियों का खुफिया तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि हमला होने से पहले ही उसकी साजिश को नाकाम किया जा सके। इसके साथ साथ आर्थिक कड़ियों को तोड़ना यानी टेरर फंडिंग पर रोक लगाना भी आतंकवाद पर लगाम लगाता है। जी हाँ, आतंकवाद बिना पैसे के नहीं चल सकता। हथियारों और संगठनों को मिलने वाली फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करना सबसे जरूरी कदम है। इसके साथ साथ युवाओं को सही राह दिखाना और शिक्षा। जी हाँ, अक्सर कट्टरपंथी लोग युवाओं की बेरोजगारी, गरीबी का या फिर कम जानकारी का फायदा उठाकर उन्हें गुमराह करते हैं। अगर युवाओं को सही शिक्षा, रोजगार के अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो वे इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा, सर्वधर्म समभाव और देशभक्ति के मूल्यों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ग्लोबल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जब बात आती है तो आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। कोई भी देश इसे अकेले खत्म नहीं कर सकता। दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर उन देशों पर दबाव बनाना होगा जो आतंकवाद को पालते हैं या उन्हें अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने देते हैं। इसके साथ साथ मीडिया और समाज की भूमिका भी बहुत अहम है। जैसे सकारात्मक संदेशों की अगर हम बात करें तो मीडिया और सोशल मीडिया को आतंकवादियों के बयानों या उनकी विचारधारा को महिमा मंडित करने से बचना चाहिए। समाज के हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना देना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस को कैसे मनाया जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में आतंकवाद विरोधी शपथ ली जाती है। इसके अलावा देश की एकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। इस दिन सभी सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों द्वारा ये शपथ ली जाती है, हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का विरोध डटकर करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करने तथा मानव जीवन के मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी ताकतों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अंत में यही कहेंगे कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे जड़ से मिटाने के लिए प्रशासन की सख्ती, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समाज के हर नागरिक की जागरूकता व संकल्प की बेहद ज़रूरत है। तभी एक शांत और सुरक्षित भविष्य का निर्माण

जी श्रोताओं, तो ये तो थी हमारी आज की लघु वार्ता जिसका विषय था राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:15 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आज का पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम।

पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जी आया नू। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे और साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ पंजाबी गीत। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सब आम लोगों के लिए ये बात लिखी है कि क्या कभी सोचा है कि अगर सब कुछ आसान होता तो हम मजबूत कैसे बनते, अगर हर मोड़ सीधा मिलता तो रास्तों की पहचान कैसे होती। यानी हमारा कहने का भाव ये है कि अगर हमें आसानी से हमारी हर इच्छित वस्तु मिल जाती तो हमें पता कैसे चलता कि संघर्ष का समय कैसा होता है, और संघर्ष के बाद जब हमें हमारी इच्छित वस्तु या हमारी इच्छित सफलता मिलती है तो कैसा अनुभव होता है। ये अनुभव हम कर ही नहीं पाते अगर हमारी इच्छित वस्तु हमें बहुत आसानी से मिल जाती। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या कोई हमारा लक्ष्य है, वो तब तक ही हमें डराता है जब तक हम उससे डरते हैं। जब हम किसी भी चुनौती या किसी भी लक्ष्य का डट कर सामना करते हैं ना, तो वह हमें बहुत ही आसान लगने लगता है। और छोटे छोटे कदमों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य भी सिद्ध होता है और सफलता मिलने पर जो हमें खुशी मिलती है उसका एहसास ही अलग होता है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में भी आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये हमेशा ही खूबसूरत होती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी में परेशानियां बेशक हैं लेकिन ये भी गुजर जाने वाली हैं। और संगीत जो है ये हमें एक शांति देता है और किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल से लड़ने का हौसला भी देता है। जी हाँ, गुरदास मान साहब का ये गीत सुनते हैं, इसमें भी हमें यही प्रेरणा मिल रही है।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन उसे हमें आसान बनाना पड़ता है। दोस्तों, वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर हमारा दिल नहीं टूटता तो उसे जोड़कर दर्द भुलाना कैसे सीखते, और अगर हालात कभी बदलते ही नहीं तो आगे बढ़ने की वजह कैसे मिलती। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि टूटे हुए कांच और टूटे हुए दिल की किरचें सिर्फ दर्द देती हैं, लेकिन अगर हम इस दर्द के पार जाकर देखें तो दिल का टूटना इंसान के भीतर छिपे इमोशनल मैच्योरिटी यानी भावनात्मक परिपक्वता के सबसे बड़े हुनर को जन्म देता है। अगर जिंदगी में कभी दिल नहीं टूटता, कभी कोई उम्मीद नहीं बिखरती, तो हम कभी जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी गहरी सहनशीलता और रीमेक यानी खुद को दोबारा गढ़ने की ताकत भी छिपी हुई है। इस गहरे एहसास के साथ हम जब जीते हैं ना, तो और भी परिपक्व होकर निकलते हैं।

जी हाँ दोस्तों, उदासियों के बाद जब ये उदासियों के बादल छंटते हैं ना, तो सामने एक साफ आसमान दिखाई देता है जहाँ पर फिर से जीने की उम्मीद होती है। और वैसे भी दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर ठोकर ना लगती तो संभलने का हुनर कैसे आता, क्योंकि ठोकर इंसान की दुश्मन नहीं है बल्कि उसकी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। देखिए ना, बिना गिरे संभलना सीखने का दावा वैसा ही है जैसे बिना पानी में उतरे तैरना सीखने का दावा। और हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या दूसरों के अनुभवों से सीख लें, लेकिन जब तक ज़िंदगी हमें खुद कोई झटका नहीं देती ना, तब तक हमें अपनी कमज़ोरियों का एहसास नहीं होता। ठोकर हमारे भ्रम को तोड़ती है और हमें वास्तविकता का आईना भी दिखाती है। दोस्तों, जब हम पहली बार ठोकर खाते हैं ना, तो दर्द होता है, हम निराश होते हैं, लेकिन जब हम दोबारा खड़े होते हैं ना, तो दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। पहली, सतर्कता। अब हमें पता होता है कि रास्ते में कहाँ गड्ढा है या कहाँ पैर फिसल सकता है। दूसरा होता है आत्मविश्वास, कि हमें ये भरोसा हो जाता है कि अगर हम दोबारा गिरे तो हम में फिर से खड़े होने का दम भी है। इसे ही कहते हैं संभलने का हुनर। और किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। और ज़िंदगी के सफ़र के लिए एक और खूबसूरत नज़रिया ये भी है कि ठोकरें खाकर भी जो संभल सकता है वो अक्सर इतिहास बदल सकता है। रास्ते की बंदिशें तो बस एक बहाना है, जिसे चलना है वो राह बदल कर भी निकल सकता है।

जी हाँ दोस्तों, अंत में एक बात ये हम आप सबसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो लोग टूटने और बिखरने के डर से हर वक्त सहमे रहते हैं ना, वे असल में ज़िंदगी को खुलकर जीना छोड़ देते हैं। उनका ये डर वैसा ही होता है जैसे कोई इस डर से घर से बाहर ही ना निकले कि कहीं आसमान में बादल ना घिर आए या कहीं रास्ते में धूल ना मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी का असली लुत्फ तो मौसम के हर मिजाज को गले लगाने में है। जब हम बिखरने से बहुत ज़्यादा डरते हैं ना दोस्तों, तो हम नए प्रयोग करना, नए रिश्ते बनाना और नए रास्तों पर चलना बंद कर देते हैं। हम अपने आसपास एक ऐसी सुरक्षित दीवार जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं बना लेते हैं, जिसके भीतर ना तो कोई चुनौती आ पाती है ना ही कोई बड़ी खुशी। इस चक्कर में इंसान आज के खूबसूरत पलों को जो उसके सामने है उस कल के डर में गंवा देता है। दोस्तों, टूटना अंत नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण में बदलता है। प्रकृति को ही देखिए, एक बीज जब मिट्टी में दफन होकर खुद को तोड़ता नहीं, बिखरता नहीं, तब तक उससे एक विशाल और फलदार वृक्ष का जन्म नहीं हो पाता। और वैसे भी दोस्तों, जैसे दिल की धड़कन की लाइन जिसे ECG कहते हैं, जब तक ऊपर नीचे होती रहती है ना, तब तक ही इंसान जिंदा माना जाता है। अगर वह लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव, गिरना संभलना, टूटना और फिर से जुड़ना ही हमारे जिंदा होने की सबसे बड़ी निशानी है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी उस कच्चे घड़े की तरह नहीं जो एक बार टूटा तो बेकार हो गया। जिंदगी तो उस मिट्टी की तरह है जिसे जितनी बार तोड़ कर बिखेरा जाएगा, वक्त का उस्ताद कलाकार उसे उससे भी खूबसूरत शक्ल में ढाल देगा। इसलिए डरना कैसा, बिखरने का खौफ छोड़कर निखरने की जिद पालना ही असली जीने का सलीका है।

जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी बातों के इन जज्बातों को मुकम्मल करती हुई ये पंक्तियाँ हम ज़रूर आपके सामने रखना चाहेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस मंजिलों की जानिब, हम कुछ ना मिला तो क्या तजर्बा तो नया होगा। दोस्तों, इसी सोच के साथ

अब आपको हम इस कार्यक्रम में छोड़े जाते हैं, विदा लेते हैं, आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर इस वादे के साथ कि किसी अन्य दिन किसी अन्य कार्यक्रम में फिर कुछ बातों और गीतों के साथ आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। यहाँ पर आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की हमें दीजिए इजाज़त। रब रखा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:45 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।

0: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी लोक रंग कार्यक्रम तुहां सुना दे तुहां दी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों अगला लोक गीत जेड़ा अहां तुहां जो सुनाना जा कर दे, तिस जो गाया जनक राज होरां

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोतियो, जियां गलांदे ना भई जे गर्मियां च कुती बाहर निकलना हो तो छतरी या फिर परना या फिर तौलिया या रुमाल या टोपी इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, पर इस दी सौगी सौगी अहां जो ठंडा पानी भी अहां दी सौगी जरूर रखना चाहिए, कहें भई गर्मी जाली लगती ना ताली बार बार प्यास लगती, तो प्यास लगने पर जे अहां पानी पींदे रहिए ना तो अहां दा शरीर भी ठीक रहिंदा, कने ठंडक भी अहां जो मिलती रहिंदी। तो इस लोकगीत ते भी कुछ एदे ठंडक आवा दी, आवा सुनी लैंदे ए लोकगीत।

जी दोस्तों, इस लोकगीता सौगी हूँ अज का लोक रंग कार्यक्रम इत्थी खत्म होआ दा। तुहां अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखा, स्वस्थ रहा, कने इयां ही सुनदे रहा आकाशवाणी हमीरपुरा दे कार्यक्रम। कने अंजू शर्मा जो दिया अज का लोक रंग कार्यक्रम संपन्न करने दी इजाज़त। राम राम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं।

0: के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब प्रदेश के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है ताकि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है ताकि बच्चों को अपने ही क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60,00,000 मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। उधर कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 26 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी।
2: जिले भर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा। बड़ा भंगाल में भी इस बार एक हम पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा पंचायत का चुनाव गर्मियों में हो रहा है और काफ़ी लोग बड़ा भंगाल में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो लोग भी मत अपने मत के उपयोग के अधिकार से वंचित ना रहे। इस दृष्टि से ये मामला माननीय आयोग के समक्ष रखा गया था और माननीय आयोग ने निर्देश दिया कि हमने वहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन इस्टाब्लिश करना है।
1: शिमला में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच हड़ताल पर बैठे सहायक कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 41 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को पत्र जारी कर 270 आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।
3: बड़े अच्छे माहौल में हमारी बैठक भी हुई है और सब ने इस चीज़ को माना भी है कि हम आपके परिवार हैं, तो मैं परिवार का एज ए मुखिया होने के नाते मैंने इस चीज़ को समझा दिया और अब हम अपने आप को इस कार्य को जल्द से जल्द इसको सुलझा लेंगे।
1: वहीं दूसरी ओर सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यदि निगम प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
4: अगर सुबह 12 बजे से पहले बैठक का आयोजन करके समाधान की ओर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से अगले चरण के आंदोलन का कल हम ऐलान करेंगे, जो इससे ज्यादा उग्र होगा और वो जरूर प्रबंधन को और प्रशासन जो है एमसी का उसको दिक्कत खड़ी करेगा। उम्मीद ये है ये बातचीत का दरवाजा खोलेंगे और मुद्दों का समाधान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान मंडी के निवासी व एनएचपीसी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। इस उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
5: इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में स्वच्छ ऊर्जा, जल विद्युत, हरित विकास, खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। भूपेंद्र गुप्ता की भागीदारी भारत के ऊर्जा विकास में उनकी विशेषज्ञता और एनएचपीसी की बढ़ती वैश्विक भूमिका की बड़ी पहचान माना जा रहा है। मंडी के विजय हाई स्कूल के पूर्व छात्र भूपेंद्र गुप्ता पिछले 3 दशकों से देश के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।

प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते कल ऊना में सर्वाधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के मैदानी जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

अलीशाज़ लव नोट्स ये एल्बम का नाम है, अलीशा की आवाज़, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मल्लिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, साहिर होशियारपुरी के ये शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का और एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

0: पी बलराम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम, जय वालिया की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, संगीत ललित का।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी श्रोताओं, आइए अब

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सोनू निगम का गाया हुआ ये गैर फिल्मी नगमा।
4: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: अचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

जी, अलीशा के गाए इस गीत के साथ ही अब आज का सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। जी सैनिक भाइयों, हम उपस्थित हुए हैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत लेकर। कार्यक्रम का आगाज करते हैं देशभक्ति के इस गीत के साथ जिसे गाया है सोनू निगम ने। फिल्म है LOC कारगिल। जावेद अख्तर ने इस गीत की शब्द रचना की है और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

जी सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल ने फिर याद किया का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू ने। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

जी सनी भाइयों, आइए अब सुनते हैं क्योंकि इट्स फेट फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

जी सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं आरजू फिल्म का ये गीत जिसे गाया है अलका याग्निक ने। इस गीत की शब्द रचना की है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

जी सैनिक भाइयों, इस गीत के साथ ही अब आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बजा है, अब से लेकर दो बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाज़ा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ, मैं आपको कोई ख़त लिखूं जिसे पा के तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफ़र तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना, ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे, तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको ख़त लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफ़र के हम सफ़र साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां ख़तों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है ये। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सकें तो ज़रूर बताइए।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी बहती जलधारा लहरें प्री के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव, ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिएं, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं? क्या किसी का साथ होता है या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हवा के साथ साथ, जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफ़र में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है। लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफ़र प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूँ, और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूँ, घर की चाय जो मेरी हमसफ़र यानी कि धर्म पत्नी ने बना कर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूँ और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफ़र में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बनफूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई ख़ास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठ कर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी और सबसे ज़्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालाँकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती लेकिन वो बातें हमें सबसे ज़्यादा ठंडक देती है। चलिए धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफ़र की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफ़र के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताज़ा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपने इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुन करके, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस ज़माने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूँछ पकड़ कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंचिए, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं, जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल विश्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहाँ कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहाँ की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी ख़त लिखने लग जाऊँ तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूँ। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाज़ा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छूमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफ़र हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज़ गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज़, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आँखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सकें, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काट कर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताज़ा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कलीज फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले की आवाज़ें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुँचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार और लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त तो होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफ़र यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: राया के बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: It is ironic that Pakistan, with its long time,
4: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
5: India has recently launched...
6: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
7: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
8: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
9: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक, लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दुख छोड़ो जिम्मेदार गल सुन कजरे वाली।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में भाभी की चूड़ियाँ इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। चंबा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले की 319 ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रेप्सपाल ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियों के अलावा मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। मुकेश रेप्सवाल ने सभी पात्र मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है।
1: हमारे जो पोलिंग स्टेशन्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर गांव के अंदर उपस्थित हैं। तो जो पोलिंग पार्टीज हैं जो कि 26 को, 28 को और 30 मई को अपने अपने स्टेशन्स पे जाके इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगी, तो जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है, साथ में जो हमारे ARO's हैं जो कि काउंटिंग के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे, उनकी करंटली जो ट्रेनिंग्स हैं वो SDM लेवल पे इम्पार्ट की जा रही है। फाइनल ट्रेनिंग हमारी 24 तारीख को होती है। उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अपना सामान मटेरियल लेके अपने पोलिंग स्टेशन्स के लिए मूव कर जाते हैं। पोलिंग स्टेशन्स पे मतदाता आते हैं, उनके लिए भी जो बेसिक वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज हैं, रैंप की उपलब्धता प्लस बिजली, पानी एक्सेट्रा, ये सब भी हर जगह पे सुनिश्चित कर लिया गया है।
0: उधर सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 1,641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 54 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील और 268 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।
2: हमारे टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो है 371,404, उसमें से पुरुष की संख्या 194,309 है, फीमेल है हमारे 177,09। और इसके अलावा हमारे टोटल पोलिंग बूथ है 1641, हाइपर सेंसिटिव पंचायत पोलिंग स्टेशन हमारे 54 हैं, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हमारे 268 हैं और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है हमारे वो 1319।
0: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। हर साल ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नगर निगम शिमला द्वारा छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राजीव गांधी के सद्भावना और विकास के दृष्टिकोण को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि उनके दूरदर्शी विचार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वहीं शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
3: आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य पे हम कांग्रेस भवन में भी और राजीव गांधी चौक पे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने हमारी विजन दी है, यूथ को विजन दिया है। 18 साल का उन्होंने ही एक वोटिंग राइट यूथ को दिया था। महिलाओं को में उन्होंने 50% इलेक्शन और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विजन दिया था। और जो उनका विजन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि किस तरीके से उन्होंने कंप्यूटराइजेशन करने की कोशिश, मॉडर्न इंडिया का विजन उन्हीं से स्टार्ट हुआ था और आज वो विजन कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है और हिंदुस्तान में जो उन्होंने आज से 30-35 साल पहले सोचा था।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
4: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए शिमला जिला की चिट्ठी। इसके लेखक हैं योगराज शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
5: मई का महीना जिला शिमला के लिए अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों, प्रशासनिक पहलों, सांस्कृतिक आयोजनों और जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए खास रहा। महीने की शुरुआत शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में पोटैटो वैल्यू चेन को मजबूत करना विषय पर आयोजित स्टेक होल्डर्स सम्मेलन से हुई। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से किसान, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और आलू उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने रसायन मुक्त आलू उत्पादन को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि अत्यधिक रासायनिक प्रयोग न केवल किसानों के स्वास्थ्य बल्कि मिट्टी की उर्वरता के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने टिकाऊ खेती और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। प्रदेश सरकार द्वारा हरित विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय परिसर से नगर निगम शिमला के 10 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया जिसने कचरा प्रबंधन के लिए अपने वाहन बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के उद्देश्य से ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक गंभीर घटना भी सामने आई जब रोहडू एसडीएम कार्यालय और अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। शिमला के भराड़ी क्षेत्र में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए जिसके बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। एहतियात के तौर पर एसडीएम कार्यालय और अदालत को खाली करवाकर तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। पुलिस ने सदर थाना में एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी व जिला जनगणना अधिकारी ज्योति राणा की अध्यक्षता में बचत भवन शिमला में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला के 26 फील्ड प्रशिक्षकों को तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी और पहली बार स्वगणना प्रणाली लागू रहेगी। 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक मकान सूचीकरण व मकानों की गणना की जाएगी। शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र में भी जिला शिमला ने महत्वपूर्ण गतिविधियों की मेजबानी की। कोटशेरा कॉलेज और देश भगत यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, तकनीकी विकास और पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। राजधानी शिमला में छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 2 दिवसीय एमएसएमई मंथन मीट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने वर्चुअल माध्यम से किया। सम्मेलन में वित्तीय संस्थानों, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया तथा मार्केट एक्सेस, तकनीकी उन्नयन, वित्तीय स्थिरता और नीति सुधार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महासु आर्ट शिमला की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में हिमाचल सहित अन्य राज्यों के कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना रहा।
4: आप सुन रहे थे शिमला जिले की चिट्ठी। इसके लेखक थे योगराज शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था।
6: पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंबले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था। और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
7: बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
6: क्या बात है।
7: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुनपन त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
6: बिल्कुल। राहीबाई पोपरे जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
7: बिल्कुल। और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती हैं कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताज़ा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहाँ से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
6: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति, इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2015 में 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
7: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
6: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
7: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
6: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं, और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में.
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: चाय
0: अगर
1: बिल्कुल,
0: मिल जाए।
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है. मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी,
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है.
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े
1: हाँ
0: थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है
1: नहीं,
0: ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर गए, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, पता है,
0: भाई,
1: बस चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी.
0: कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय, उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल.
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना, वो भी बहुत हैं। जब बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर इसे हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा,
0: और पौराणिक
1: बहुत.
0: कथाएं हैं ना, वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी, ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो क्या है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए.
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं
1: हाँ
0: ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल.
0: ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए, एक एक प्याली और हो जाए. तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे. और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे हमें मिल जाए अगर समय, बात करते करते तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो वो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट.
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्नी भिन्नी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल. और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है. और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है. और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं.
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
1: बिल्कुल
0: गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कहते ना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर, तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना ऐसा कैसे होगा,
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था. ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिख कर पहुँचाई.
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे. और चाय का उत्पादन यूँ तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है. और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था. भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है.
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं. इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है. लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है. अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपये की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं.
1: बिल्कुल. और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है. अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं. कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें.
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला.
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो.

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग

0: इलायची वाली
1: जी हाँ,
0: अंदाज
1: जब आपने कहा था
0: की।
1: आरती, अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया
0: हाँ, तो अब
1: है। हाँ
0: समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए,
0: जी
1: और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी, जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीणा वगड़ा वगड़ा नवा,
0: क्या बात
1: वाह
0: है।
1: क्या
0: और
1: बात
0: जैसे
1: है।
0: तुम बता रही थी ना, बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झींगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं, वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना, वो पीना
1: अगर
0: पसंद
1: आप
0: करते
1: चाहते
0: हैं।
1: हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज़्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी।
0: जी
1: बहुत ज़्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं, भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के
0: जी
1: कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना, मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय
1: एक
0: के
1: कप
0: प्याले भी करवा
1: बस
0: लिए
1: एक
0: जाते हैं।
1: कप चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिस पर लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है भाई।
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा
1: हाँ
0: प्यारा है
1: सच में।
0: इनका।
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही, चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूंट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षिता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेजरी लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूंट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो
1: वाह,
0: आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी, ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरे चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और
1: बिल्कुल।
0: बताओ कौन कौन से
1: और बहुत
0: फोबिया
1: से
0: होते हैं।
1: फोबिया होते हैं, जैसे कि किसी को किसी जैसे किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है
0: हाँ
1: ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है
0: जी,
1: अनावश्यक तौर पर, तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है
1: हाँ,
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जाँच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपेनोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको। और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है। और बहुत से लोगों को लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया है ऐसा, तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहाँ पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा, ये क्यों ऐसा हो रखा है, फितरों से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती। और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आँखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तेज़ धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है तो आप धूप का चश्मा ज़रूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येलो में
0: इजाजत। हाँ
1: चलिए।
0: हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लगा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज़ में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की, वॉर सिचुएशंस की, या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड ज़ीरो। तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में, जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ तो उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीज़ों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो वो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब तो इतना बड़ा आतंकवादी और
1: इतना बड़ा
0: जी कि सब
1: जान, भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है
0: जी,
1: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पर हमला करते हैं, जिस पर अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। BSF के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
0: जी।
1: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
0: जी।
1: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के ज़मीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस BSF का बड़ा अहम किरदार रहा और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
0: जी,
1: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
0: जी
1: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
0: जी
1: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पे गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
0: बिल्कुल
1: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
0: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
1: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं कहीं
0: कुछ बड़ा करना है।
1: लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि PM का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था
0: बिल्कुल।
1: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसको पकड़े जाने के बाद जो फॉलोअप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
0: बिल्कुल
1: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
0: 36 घंटे
1: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिज़ाइन किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिज़ाइन किया था। उस ज़माने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट TV विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई, अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था। और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा, 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका
0: जी
1: किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले, हमारे पर फायर करे, हमारे
0: या वो भागने की कोशिश करे।
1: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी,
0: अच्छा
1: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
0: जी
1: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया, ये बेवकूफ़ बना दिया इन्फार्मर शायद, सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था,
0: अच्छा,
1: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
0: कुछ भी नहीं,
1: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
0: देख रहा है,
1: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई, जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था,
0: अच्छा,
1: पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
0: अच्छा,
1: अगर ये उसको जरा भी पता होता
0: तो शायद
1: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
0: ओके,
1: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
0: ज्यादा होती,
1: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
0: अच्छा,
1: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक

0: सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ
1: ओके,
0: निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की
0: पूरी
1: गई और
0: हिफाजत
1: अपने
0: की
1: ऑपरेशन
0: गई
1: को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों से,
1: अच्छा
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो दो ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन
1: जी
0: छोड़ना पड़ा। तीन ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई। भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर
1: जी
0: उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद उस सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए,
1: जी
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी
1: जी
0: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है,
1: यानी
0: आंख
1: कि
0: में।
1: आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया
0: हाथ
1: आप उस
0: का,
1: वक्त,
0: सिर्फ हाथ का
1: सिर्फ
0: अंदाजा
1: हाथ
0: हुआ,
1: का।
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता
1: जी
0: नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा।
1: जी
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल
1: पता
0: टेबल
1: लगा।
0: के ऊपर ही OT में पता लगा।
1: जी
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी
0: और
1: सर,
0: चले।
1: हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी,
1: है,
0: जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में वो गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बह के बाहर आता
0: जी,
1: है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा, ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी, आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पे ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने
1: है
0: आपका दिल बचाया।
1: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, और फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा, मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
0: जी जी जी।
1: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
0: नहीं
1: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
0: जी।
1: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
0: जी,
1: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
0: जी,
1: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
0: जी,
1: रहा था
0: जी।
1: मैंने कहा सर फॉर व्हाट, बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड मेन एक्यूज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफू
0: खत्म हो गया, सही
1: तो नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
0: जी,
1: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
0: जी, जी।
1: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना हाँ। वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो जाता है
0: यस हाँ, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो अपने नमूने पेश करता।
1: नाइन ईयर्स वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज़ ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग, दिस सारीमर्ग किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जे एन के असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001 तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
0: जी,
1: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
0: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवादी
1: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतनी बड़े एम्बरेसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
0: बहुत बड़ी सर यहाँ पर
1: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
0: बिल्कुल
1: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ
0: बिल्कुल, और सर इसका सहरा इसका ताज वो आपके सर पर सजा है।
1: मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूं क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
0: बिल्कुल
1: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के
0: बिल्कुल
1: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
0: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
1: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
0: जी,
1: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
0: जी।
1: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
0: डगमगाए जी,
1: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा।
0: बिल्कुल,
1: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
0: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
1: बटालियन का हेड था
0: जी,
1: मेरे
0: आप लीड कर रहे थे,
1: लीड कर रहा था मैं, चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
0: लेकिन आप फ्रंट पर रहे,
1: खुद के रहने से
0: जी
1: मोराल बड़ा अप होता है।
0: बिल्कुल,
1: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
0: मौत के मुंह में घुस गया
1: और घुसे वो,
0: बिल्कुल
1: गाजी बाबू के माद में घुसना कोई सिंपल।
0: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
1: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं,
0: मिलता नहीं,
1: और हुआ मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
0: बिल्कुल
1: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
0: दुबे सर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
1: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
0: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्प्स।
1: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज़ वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बाडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी
0: जी,
1: बाय द आईसी स्कॉडर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन एन एन दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
0: जी,
1: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी जी बैजो
1: बच्चन, हाँ
0: अच्छा जी,
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
0: जी,
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है
0: वो आपकी यादगार।
1: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: फिल्म
0: अनबिलीवेबल,
1: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
0: बिल्कुल।
1: है
0: सर एक चीज, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
1: होते हैं।
0: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है,
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता,
1: वहां
0: जान जाएगी या जान ली जाएगी,
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
0: या मरने का,
1: तीसरा कुछ नहीं होता,
0: तीसरा कुछ नहीं, या तो
1: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
0: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं,
1: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ सर। सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं सर, ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं यूपी से।
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
0: जी।
1: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम, आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है, अगर आपका पीसीएम मजबूत है आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं, जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त है
0: जी,
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, थैंक यू सो मच।
0: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता ही लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा, मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए BSF में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए सर, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है, हो
0: जी
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये
0: क्या बात
1: उस फील्ड सिचुएशन का गाना है जब सैनिक चाइना वार के समय एक
0: अच्छा
1: डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला मैसेज आया
0: सौभाग्य
1: था वो
0: जी
1: चिट्ठी
0: मैसेज
1: के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर
1: मैं
0: थे
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया,
0: जी,
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद। वो
0: ओके
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, एक बिकम फादर। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप
0: बिल्कुल
1: फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है।
0: पहले
1: तो
0: है,
1: हो के
0: बिल्कुल
1: मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें तो।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब BSF आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: होती थी।
0: अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज़्यादा था।
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे। जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े ज़बरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पे बैठ के सुनाते
0: अच्छा।
1: थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे,
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है वो, उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप C लेवल, एक ग्रुप B लेवल, एक ग्रुप A लेवल
0: जी।
1: ग्रुप A लेवल ऑफिसर्स

0: अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी।
1: ओके
0: तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए और रिटेन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है,
1: बिल्कुल,
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है,
1: बिल्कुल,
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता
1: मौका
0: है,
1: मिलता है।
0: विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज़ रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज़ असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
1: जी।
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
1: जी,
0: सरकारी
1: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा,
0: उसके अलावा ये 9 वर्ष NIA में,
1: अच्छा,
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा,
0: मेरे दिल से लगा हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा,
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है,
1: कोर एरिया है,
0: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता
1: जी। सर आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर FM रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूँ, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। From my side, best of luck.
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
0: ये सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी,
1: बिल्कुल।
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक एक ट्रेजडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी
1: okay.
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
1: जी।
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजडी हुई थी देश में
1: जी, जी, जी।
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी। सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं, यश शिंदे हैं ये। DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर हैं कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप। नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है। नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप जज्बाती हैं,
1: बिल्कुल
0: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
1: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें, जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
0: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय

0: उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके
1: जी
0: पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं,
1: जी
0: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के
1: बेशक,
0: चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू
1: आप
0: सर,
1: सुन रहे हैं
0: थैंक यू
1: आकाशवाणी
0: सर।
1: रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही हैं रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 MHz पर 5:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। आप सभी का इस कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले सुने कार्यक्रम के आरंभ में करनैल राणा और साथियों की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी, आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
3: आरबीआई कहता है?
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आइए अब सुने जोगिंदर बल्ला और साथियों की आवाजों में ये भक्ति रचना। आप सुन रहे हैं भजन संध्या। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है।

भजन संध्या, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुने शेर सिंह और साथियों को आज की इस अंतिम प्रस्तुति में।

तो दोस्तों इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम भजन संध्या यहीं समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त मधु को इजाजत दीजिए। अपनी ट्यून के एफएम हमीरपुर आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

युपमंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया। जी कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं, तो आज फिर हम हाजिर हैं आप सभी को जानकारी देने के लिए। तो आज हम जानकारी आप सभी को देंगे राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में, और साथ ही कार्यक्रम में भी मनोरंजन हम आप सभी का करवाएंगे फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हर साल 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चाय उद्योग के आर्थिक महत्व, चाय बागान के श्रमिकों के अधिकारों और इसके सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, चाय दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली दूसरी सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है। इस दिवस की शुरुआत 2005 में भारत, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे चाय उत्पादक देशों में हुई थी। दोस्तों, बाद में 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान की। आपको बता दें कि भारत में असम राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक है और दार्जिलिंग में चाय भारत का पहला ऐसा उत्पाद था जिसे वर्ष 2004 में सबसे पहले भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि युवा अब चाय का स्टार्टअप खुद से कर सकते हैं। ये स्टार्टअप कैसे

0: कर सकते हैं, आइए बताते हैं। देखिए दोस्तों, चाय के व्यवसाय में बिक्री का मुख्य आधार लोगों की आवाजाही है। अपने स्टार्टअप के लिए ऐसी जगह लोग चुन सकते हैं जहां लगातार लोगों का आना जाना बना हो, जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय के बाहर कार्यालय क्षेत्रों के पास और भीड़ भाड़ वाले बाजार और बस स्टैंड के पास भी आप अपना चाय का स्टॉल लगा सकते हैं। दोस्तों, चाय के साथ आप कुछ स्नैक्स जोड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, जैसे मसाला चाय, अदरक चाय, इलायची चाय, तंदूरी चाय, कुल्हड़ चाय और या फिर हर्बल और ग्रीन टी। स्नैक्स की बात करें तो आप चाय के साथ बिस्किट, समोसा, मैगी और सैंडविच जैसी चीजें भी शामिल कर सकते हैं। देखिए, अपने ब्रांड के लिए आप एक आकर्षक नाम और लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया और अन्य ऐप्स के माध्यम से आप अपने कैफे की तस्वीरें और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आपको बता दें, देखिए, ठंड के मौसम में एक कप गर्म चाय शरीर के तापमान को संतुलित करने और अंदर से गर्माहट महसूस करने में मदद करती है। दोस्तों, सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए अदरक, तुलसी, लौंग और दालचीनी वाली मसालेदार चाय पीने से बंद नाक और गले की खराश में तुरंत आराम मिलता है। बता दें कि चाय के मौसम में देखिए मौजूद एथीन और कैफीन दिमाग को शांत करते हैं और ठंड के छोटे दिनों में ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सर्दियों में दोस्तों या परिवारों में बैठकर चाय की चुस्की लेना एक बेहतरीन सामाजिक अनुभव सा बन जाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम में हम आप सभी के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी वक्त है छोटे से अंतराल का, और अंतराल के बाद हम आप सभी को सुनवाएंगे कार्यक्रम का पहला गीत।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड

0: टू HP यूनिवर्सिटी
1: UGC से मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: जी हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युग मंच। इसी के चलते अब बात करते हैं संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। जी दोस्तों, ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों की समृद्धि को उजागर करना, सांस्कृतिक अंतर को और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। आपको बता दें कि इसमें पहले वर्ष 2001 में अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान द्वारा बामियान बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इस विनाशकारी घटना के जवाब में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया ताकि संस्कृतियों के बीच शांति और संवाद को फिर से मजबूत किया जा सके। अब बात करें शांति और विकास की, तो देखिए यूनेस्को के अनुसार दुनिया के अधिकांश संघर्ष उन क्षेत्रों में होते हैं जहां विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद का अभाव होता है। यह दिवस आपसी बातचीत के माध्यम से संघर्षों को कम करने में मदद करता है। इसी के चलते बात करते हैं सांस्कृतिक संपदा का सम्मान की, तो इसमें यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया की विविधता जैसे भाषा, कला, संगीत, भोजन और विश्वास हमारी सामूहिक विरासत है। दोस्तों, सतत विकास की बात करें तो सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र वैश्विक GDP में बड़ा योगदान देते हैं और युवाओं और महिलाओं को भारी मात्रा में रोजगार भी प्रदान करते हैं। इसी के चलते अब बात करते हैं इस दिवस के मुख्य उद्देश्य की, तो देखिए सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों के बारे में दुनिया भर के लोगों और समुदायों में जागरूकता को बढ़ाना है, साथ ही विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच समझ और सहयोग को भी बेहतर बनाना है। बता दें कि रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को दूर करके एक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। अब इसी के चलते बात करते हैं कि हम कैसे इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी अन्य संस्कृति के बारे में जानने के लिए कोई नई किताब पढ़ना या अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आप देख सकते हैं, साथ ही अपने आसपास के किसी अलग समुदाय या संस्कृति के पारंपरिक भोजन, संगीत या कला का अनुभव भी आप कर सकते हैं, साथ ही समावेश और विविधता का समर्थन करने वाले अभियानों में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी के चलते अब बात करते हैं रोजगार सूचना की, तो हम बात करेंगे युवाओं के लिए UNDP का फ्री कोर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की बड़ी समस्या बन सा गया है। बढ़ती गर्मी, बाढ़, सूखा और अनियमित बारिश लोगों के जीवन का और भी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। भविष्य में युवाओं और बच्चों को इसका ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए युवाओं की भागीदारी ज़रूरी है। दोस्तों, इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन नाम का ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स युवाओं को जलवायु परिवर्तन की जानकारी, नेतृत्व क्षमता और नीति निर्माण में भाग लेने के आवश्यक कौशल भी प्रदान करेगा। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि ये पूरी तरह से निःशुल्क है और छात्र और युवा इसे अपनी सुविधा और समय के अनुसार स्वगति से पूरा कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रतिभागियों को जलवायु परिवर्तन की बुनियादी अवधारणाओं और उसके प्रभावों, समाधान के तरीकों को समझने का अवसर भी मिलेगा। साथ ही ये कोर्स युवाओं को अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने, जलवायु कार्रवाई में भाग लेने और नीति स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार करेगा। इसमें

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु नीति, जलवायु शासन और नागरिक समाज की भूमिका को सरल भाषा में समझाया भी गया है। युवा दोस्तों, कोर्स के दौरान प्रतिभागी जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक कारणों और उसके प्रभावों को समझ सकेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के दो प्रमुख उपाय अनुकूलन और समन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। युवा दोस्तों, प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जलवायु शासन की कार्यप्रणाली समझने का अवसर भी मिलेगा। साथ ही ये बताया जाएगा कि युवा और नागरिक समाज जलवायु नीति और अभियानों में किस प्रकार समर्थक भागीदारी निभा सकते हैं। देखिए, ये कोर्स युवाओं को जलवायु नेतृत्व और सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही बता दें कि इसमें प्रतिभागियों को जलवायु वार्ताओं को समझने, उनका विश्लेषण करने और उनमें सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा दुनिया भर के युवाओं से जुड़कर अनुभव साझा करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही कोर्स पूरा करने वाले प्रतिभागियों के प्रमाण पत्र भी उन्हें दिए जाएंगे और इसके लिए सभी 5 ऑनलाइन मॉड्यूल और क्विज और सर्वेक्षण रूप से कार्य भी आवश्यक है। आप सभी को बता दें कि उम्मीदवारों को पहले UNDP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां नीचे स्क्रॉल करने पर आपको प्रोग्राम दिखाई देगा। इसके बाद उम्मीदवार प्रोग्राम पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो युवा दोस्तों, आइए इसी के चलते अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी, तो इसी के साथ आज का युवमंच कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया को। नमस्कार।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर ए एस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। लौट कर आएंगे आप सभी के रेडियो सेट्स पर 6:05 पर, लेकर कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। तो सुनते रहिए आकाशवाणी हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर निगम महापौर और सहब कर्मियों के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सहमत मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
1: जो इनकी डिमांड्स थी उसको हमने 10% की वृद्धि को भी माना। EGM 4 जून को होने तय हुई है, उसको हम उसमें फाइनल करेंगे। एक डिमांड ये भी आई, जो हमारे कर्मचारी सुपरवाइजर जिनको टर्मिनेशन का लेटर इश्यू हुआ है वो किया जाए, उसमें मैंने लिखा है और उसको मिश्रा साहब को भी भेजा है साथ साथ कि आप इसको जो भी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिवोक भी किया जाए। हमारा एक पारिवारिक एक मसला जिस तरह से होता है उसको बैठ के हमारी सारी चीजें सॉल्व हुई।
0: दूसरी ओर सहब सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे।
2: हमारी जो मेयर साहब के साथ सहमति बनी हुई है कि जो 10% है वो मेयर साहब की तरफ से क्लियर है कि हम दे, पर इसे जो है EGM ने ले जाना पड़ा। जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो रोड स्वीपिंग स्टाफ है, उनको 4/9/14 नहीं लगता था, उसके लिए भी इन्होंने हम ही वर्क दिया कि वो भी हम जो है इसको कर देंगे। और साथ में स्पेशल लीव जो मिलती थी हमारे 15 डेज की, वो भी जो है इन्होंने हम ही भरी है कि इसको भी हम दोबारा चालू कर दें। और जो हमारे 41 लोग टर्मिनेट किए गए हैं उनको भी जो है मेयर साहब ने यहाँ से लिख के भेज दिया है कमिश्नर साहब को, इनकी सेवाएं जो है कल से शुरू की जाए और कल से जितने भी सहायक कर्मचारी है वो अपने अपने कार्य पे जाएंगे।
0: गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह से सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। हर साल ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नगर निगम शिमला द्वारा छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राजीव गांधी के सद्भावना और विकास के दृष्टिकोण को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि उनके दूरदर्शी विचार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वहीं शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने रेणुका जी बांध प्रबंधन पर विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांध प्रबंधन ने NGT के आदेशों को दरकिनार करते हुए सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू किया और NGT की शर्तों को भी पूरा नहीं किया। योगेश ठाकुर ने कहा कि रेणुका जी बांध प्रबंधन विस्थापितों पर जबरन कई शर्तों को थोप रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
3: रेणुका बांध में जो हमारे विस्थापित बाई इफेक्टेड जो हो रहे हैं उनके साथ जो है पिछले 17 सालों से अनदेखी की जा रही है, तो हमारी मांग यही है कि NGT के मापदंडों को जो हमारा बांध प्रबंधक है उसको फॉलो करे, जो भी ये कंडीशन है ये इसको हटाया जाए और बिना कंडीशनों के हमारी जो हाउस लेस के लिए जो भी हमें पैसा मिलना है वो बिना कंडीशनों को हमें मिले।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफ़र सुहाने, गाने नए पुराने। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से मधु का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, घनी कमा दुआ वणकम, प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमें मालूम है कि इस वक्त बिल्कुल आप अपने रेडियो सेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ड्राइविंग करते हुए ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कुछ चाय की चुस्की के साथ कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं और कुछ शायद इस वक्त न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे। बहरहाल काम तो दोस्तों यूं ही चलते रहेंगे और साथ ही साथ हम आपका साथ बिल्कुल इत्मीनान से यूं ही देते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत बिना किसी देरी के, और लेकर आ रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी स्किल है हर परिस्थिति में खुद को संभालना। बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए और यही समझदारी की पहली निशानी है। समय की कदर कीजिए, सफलता की सबसे जरूरी आदत है ये, और हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कला ही असली लाइफ स्किल है। तो बिल्कुल सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कोशिशें करते रहिए, क्योंकि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। सफर सुहाने, गाने नए पुराने। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, FM हमीरपुर से।

बिल्कुल दोस्तों, रिश्ते निभाने के लिए व्यवहार जो है वो बहुत मायने रखता है। ना कहना सीखना भी एक जरूरी लाइफ स्किल है दोस्तों। गलतियों से मत डरिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सकारात्मक सोच इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करती है। और खुश रहना भी एक कला है, ये अंदर से शुरू होती है दोस्तों।

0: और दोस्तों, पहाड़ों की ठंडी हवा जो है वो हमारी पहचान है, लेकिन बदलते मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सावधानियाँ रखिए, सही खान पान और पर्याप्त पानी पीजिए।
1: धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका।
0: अपना ख्याल रखिए, तभी आप अपनों का ख्याल रख सकते हैं।

0: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिंदगी के उन खूबसूरत से फलसफों की, धैर्य और सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ना सिखाती है। गलतियों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, और समस्या से भागना नहीं है, उसका हल ढूंढना है। आत्मविश्वास वो ताकत है जो मुश्किल रास्तों को आसान बना देती है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तो दोस्तों, इसी के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त मधु को आज का ये प्रोग्राम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए।

0: फिर गोहा पाना, गोमूत्र चूना कने मिट्टी जी है सह पाई देना, कने तीना जो ठीक ढंग ने मिलाई देना, कने इस जो रात भर जो है टक्की करने रखना, यानी कि 12 घंटे लगभग जो है टक्की ने रखी सकते। कने सवेरे मिश्रण जो फिर यहाँ डंडे कन्ने लाना ता बीजा अमृत जे ऐसे तैयार हो जंदा।
1: अच्छा तो भाई देखा इसरा उपयोग किए करना ही आ, पे बीजा जो इस मिश्रण च पाई ने जे आ हल्के हाथा ने जे ऐसे हम लाना ही आ, या फिर बीजा पर इस जो हाँ छिड़की सकते आए। इस ते बाद बीजा जो जे ऐसे छवा च सुखाई ने जे ऐसे हैं बुआई या है करी सका ही आए।
0: बिल्कुल बीजा अमृत कन्ने बुआई करने ते जाली भी हाँ खेतरा च बुआई कर गे ना तो पुआजा जे ऐसे फिर यहाँ जो खरा मिलदा।
1: बिल्कुल कने दूजी भी दिए रही गल करिए तो ट्राइकोडर्मा विरडी यह विधियां ने भी अहें जे ऐसे उपचार करी सका या इस जे जियां जैविक कवकनाशी सो बोलते हैं। इस जे मिट्टी च पैदा होने वाली फंगस जे आ जियां जे जड़ सड़न कॉलर रॉट इन बीमारियां जो ये रोकाई आई।
0: बिल्कुल तो इस जो अहां कियां बनाना पे दिखा ना, 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर जेड़ा ना सह लेना प्रति किलोग्राम बीए दे साबा ने।
1: बिल्कुल
0: कने फिर बीए जो थोड़े जे पानी च या हल्के गुड़ा दे घोड़ च जे ऐसे गीला करना ताकि पाउडर जी ऐसे बीया पर चिपकी सके पे टंगा करने।
1: बिल्कुल
0: कने इसके बाद फिर जेड़ा ट्राइकोडर्मा पाउडर है तिसदा छिड़काव जे ऐसे बीया पर करी देना पे ठीक ढंग ने जे ऐसे मिलाई देना पूरा पाउडर तीन बीया च ना। कने बाद च फिर से हल्की छौवा च जे ऐसे सुखाई लेना पे, छौवा च सुखाना पे धुप्पा नहीं सुखाना फिर।
1: बिल्कुल
0: कने फिर यहाँ तीन बीया जो बाई सकते पे खेतरा च।
1: तो इस ते अलावा जी यहाँ अगली भी दियर गल करिए तो PSB कने राइजोबियम इसरा उपचार जो असें भी अहें करी सकें या ए भी दी जाई से अवत नाइट्रोजन सोखने कने मिट्टी च बंद फास्फोरस जो सक्रिय करने ताई जी असें अपनाई जाई आई।
0: बिल्कुल जी दलहनी फसलां होंदियां ना चने दी दाली दी फसल होई मूंगी होई अरहर तो ये राइजोबियम कल्चर दा प्रयोग जो ऐसा इन्हां च करना चाहिदा।
1: बिल्कुल कने दूजी फसलां जियां गेहूं होई या धान होई या सब्जियां होई तो इस जो एजो वैक्टर या PSB का प्रयोग जो असं इस करी सकें या कने मात्रा 20 ग्राम कल्चर प्रति किलोग्राम बीजे के हिसाब ने जो असं अहाँ लैना ही आने विधि हरी गल करो तो 100 ग्राम गुड़ा च आधा लीटर पानी च उबाली ने अहाँ ठंडा करना ही आ। इस गुड़ा के पानी च जो असं बायो फर्टिलाइजर अहाँ मिलाना ही आ।
0: अच्छा।
1: कने इस मिश्रण च बीजा पर लगाई ने जो अच्छे ते अहाँ रगड़ना कने छौइया च जो असं सुखाई ने जो आ इसके बाद अहें बुआई करी सकें।
0: बिल्कुल कने इसके अलावा भी ना जियां घरेलू कने वनस्पतिक उपचार जे है सह भी यहाँ करी सकते। जियां दिखा ना पई हल्दी कने हींग जे है हर घर जे है हुंदा पई है ना।
1: बिल्कुल
0: ता हल्दी च प्राकृतिक एंटोबायोटिक कने एंटी फंगल गुण जे है हुंदे ते इस ताई यहाँ क्या करना पई जियां 1 किलो बीज जे है लेई सकदे कने 5 ग्राम हल्दी पाउडर कने 2 ग्राम हींग जे है से थोड़े जे पानी च मिलाई कने बीया पर जे है से तिना दा लेप जे है से बनाई देना पई।
1: बिल्कुल कने सौगी लहसुन रा अरका रा इस्तेमाल भी जे असे है करी सके है बीज उपचार च। इस च जे लहसुन दी कलियां जो पीसी ने तीन रा रस जे असे है ਕੱਢੀ ਸਕਾਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਰਸਾ ਜੋ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲਾਈ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਜੋ 20 ਮਿੰਟ ਤਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਚਾਹਾਂ ਭਿਗੋਣਾ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੀਆ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਨਿਤ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆਈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਘੂ ਸਤਰ ਆ ਜੀਆਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਪਰ ਜਾਲੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ताली यहां जो कुछ गल्लां जे ऐसे ध्यान च जरूर रखना चाहिदियां।
1: बिल्कुल
0: पे दिखा जाली भी बीज उपचार करी लिया तो छाया च जे ऐसे बीज जो सुखाना चाहिदा उपचारित बीज जे ऐसे कदी भी तेज धुप्पा पर जे ऐसे हां जो नहीं सुखाना चाहिदे।
1: या फिर आहरी जगह जे ऐसे पई कई बार होंगे है कि बंद कमरे जो असें बीज रखी देंगे पे हाँ जी बढ़िया तेज धुप्प च नहीं सुखाना या बढ़िया तंग जी जगह रखी देंगे पर हवादार जगह होना बड़ी जरूरी है।
0: बिल्कुल तिसते फिर असर जो है जो उपचारित किते होंगे ना उसे असर घट नहीं होंगे पे कने रसायन ते दूरी जे से जरूर रखना चाहिए। जियां जैविक उपचार जाली जी हाँ करा दे ता जेड़े जी भांडे लैने ना मतलब जियां पानी पा दे या कुछ भी हाँ काम कार करा दे ता सह भांडे जे ऐसे रसायन छिड़काव वास्ते हाँ यूज नहीं किते होन तीन चीजां ते हाँ जो दूरी जे ऐसे बनाना चाहिंदी।
1: हाँ फिर यहाँ अपने हाथ जे ऐसे ताली जे हाँ प्रक्रिया करी करदे होन ताली भी हाँ जो रसायनिक कीटनाशक का अंश जे ऐसे हरे ना हाथों पर लगने चाहिंदा ना तो हरे बर्तना पर लगी होने चाहिए।
0: हाँ मतलब अगर महा जाली भी बीज उपचार करना तो हाथ पैर जैसे ढंगा करने धोई करने कने अच्छे भांडे जैसे यूज करना चाहिए इस वास्ते।
1: सोगी अहाँ टाइमर ध्यान जे ऐसे बिल्कुल अहाँ संतुलित रखना चाहिए भी बीजा जो उपचारित करने के बाद या 6 से 24 घंटे के भीतर हाँ जो बोई देना चाहिए है
0: ज़्यादा टाइम जो ऐसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर हाँ रख गए तो जैविक बैक्टीरिया जो ऐसा निष्क्रिय हो जाते
1: बिल्कुल कनसौगी जी मिश्रण का क्रम रखिए यदि जिंह कवकनाशी या ट्राइकोडर्मा कल्चर या राइजोबियम दूं इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले कवकनाशी लगाना इसके बाद यहाँ कल्चर का लेप जो ऐसे करना ही
0: हाँ तभी ये गल् जो ऐसे ध्यान जरूर रखना चाहिए कने अगर हाँ ये गल्ला ध्यान च रखी हुई कने बीज उपचारित किते होगा कने खेतर च बाहे होगा तो पुआजा जो ऐसे हाँ जो खरा मिलना ही मिलना मेहनती का फल पल्ले पई आ ना तो हाँ किसान ना चेहरे पर जैसे कितनी रौनक जो ऐसे आई जाती
1: बिल्कुल तो पे गल रौनक दी तो कार्यक्रम च भी रौनक जैसे हाँ लगा लेने कने रौनक ताई सुनना है मिठड़ा जी हाँ लोक गीत।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM 91.8 MHz पर 7 बजे
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुवन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेक और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं, अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो दी तान।

0: जी बिल्कुल, पशुओं की सेवा करनी ता अहां बिल्कुल अग्गे बढ़ना कने वातावरण की रक्षा करनी ताही अहजे से सुरक्षित महसूस कर सकते। ता बिल्कुल ये जी प्रदूषण आ इसते अहां अपनी धरती जो बचाई सकते। अचानक भारी बरसात होई आती तो कभी सूखा पई आता तो कभी बड़े ज़्यादा ठंड पई आती तो कभी बिल्कुल असहनीय गर्मी महसूस होती। तो ये जो बदलता मौसम हाँ इसका असर ना सिर्फ पशुओं पर पई करता बल्कि खेती बाड़ी पर भी पई करता, अहाँ पर भी अहाँ की सेहत पर भी पई करता, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, खेतों च काम करने वाले लोग जे बड़े ज़्यादा प्रभावित होई करते। अगर हाँ थोड़ी जी समझदारी बरतीए तब बिल्कुल अहे अपनी प्रकृति जो अहे वातावरण जो काफ़ी हद तक बचाई सकते। तब मिली करें अहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लाने चाहेंदे, मिली करने पानी बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करिए, ता अपने आसपास जे असा साफ सफाई रखिए। बिल्कुल इस सारी चीज़ा जे इसे बड़ी बड़ी ज़रूरी ताकि जे अहे अपने वातावरण जो सुरक्षित रख के ताई अहां सुरक्षित रह सकते, अहां दी अगली पीढ़ी सुरक्षित रह सकती।
1: डोगी डोगी नदिया बड़ी ते

कन्नै 12 बजे ते 3 बजे तक जे सत्तू बड़ी भारी तेज़ होंदी तां इसदे कोशिश करियै भाई इसते जे ऐसा बचाव अहां दा होई सके। तो बिल्कुल गलबात अहां जारी रखनी, फिलहाल ए गीत सुने लैंदे, पहाड़ी गीत बिमला राठौर दी आवाज़ च, फिर करदे गलबात कार्यक्रम तुहां सुनी करदे रेड़ियां दी तान।

जी दोस्तों, तुहां सुनी करदे कार्यक्रम रड़ियां दे दान कने अहे गल करी करदे अज दे इस प्रोग्राम च गर्मी दे बचाव दी। तां बिल्कुल दोस्तों, दोपहरा च 12 बजे दे लई ने 3 या 4 बजे तकर बाहर बिल्कुल घट करी देया निकलना जरूरी काम जे ऐसा तुहां सवेरे भी करी सकदे 9 ते लई ने 11 बजे तकर कने 4 ते 6 बजे तकर तुहां बाहर निकलने वाले से जे जरूरी काम ऐसे बाद च भी कर सकते।

कन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा फल खाने की जरूरत ही खीरा तरबूज फल जैसे अहां दे शरीर जो बहुत अच्छे गर्मियों च कन्ने दही कन्ने छा शरीर जो ठंडक पहुँचाते बुजुर्गों का तो बच्चों का खास ख्याल रखा क्योंकि गर्मी च ज़्यादा गर्मी च जैसे जल्दी बीमार हो सकते तो बिल्कुल क्या अहां नहीं करना खाली पेट बिल्कुल धुप्प च बाहर नहीं निकलना बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना कने धुप्पा तो बाहर तो आई ने जे असें एकदम बर्फाला ठंडा पानी भी नहीं पीना तो बड़ा तला पुणिया खाना भी नहीं खाना तो बच्चों जो भी जे असें नहीं खुआना कने बच्चों जो बिल्कुल बंद गड्डी अकेला बिल्कुल भी नहीं छड़ना तो ये कुछ सावधानियाँ ही सजे हंदू रखने की जरूरत ही पर गर्मियों च क्योंकि ये थोड़ी जी समझदारी तो थोड़ी सावधानी जी यहाँ जो गर्मियों च बचाई सकती तो बिल्कुल अपना खास ख्याल रखा बच्चों का खास ख्याल रखा बुजुर्गों का खास ख्याल रखा कने घर के बाहर जाते बेला जे असें पानी जरूर कन्ने लेने जा जे जरूरत ही पई जाती बाहर धुप्पे च बाहर निकलने की तो जरूर पानी की बोतल जे असें अपने आपू कन्ने रखा तो दोस्तों हूँ एक और गीत पहाड़ी गीत सुनी लेंदे के आर सहगल की आवाज़ च कने फेरी गल बात करदे आज दे इस कार्यक्रम च कार्यक्रम है जी रेड़ियां दी तान।

कैसा लगा गोरिये पहाड़े दा बसना। जी हाँ, ये जी पहाड़े ए ता आहां जो सिखांदे सुकून, सादगी ते प्रकृति दे नेड़े रहना सिखांदे पहाड़। चीलां दी खुशबू, देवदारां दी खुशबू, ठंडी ठंडी हवा ता पहाड़ां दी मीठी बोली। बिल्कुल ये सब कुछ कितना इन्हां चीज़ां च अपनापन है दोस्तों। आहां दी संस्कृति, आहां दी भाषा, आहां दी बोली। धूप भले ही तेज हो, छाँव बनो तो हाँ किसे दी, मीठे बोल ते ठंडा पानी दवाई बने गर्मी दी। पहाड़ां दी हवा कहंदी, रामा ने चला संभली ने जिया, सेहत सबसे बड़ी दौलत, ए गल कदी मत भुला। तो बिल्कुल दोस्तों, ये गल जे से बिल्कुल सही है, कने आहां जो बड़ा कुछ सिखांदी, कने आहां जो सीखने दी बड़ी ज़रूरत है।

तो श्रोत्याओ, पहाड़ अहाँ का घर है, प्रकृति अहाँ की पहचान है, तो इसकी रक्षा करना अहाँ का फर्ज है। तो इसी प्यारे जे संदेश करने आज का ये कार्यक्रम इतनी समाप्त करने की तुहते लेंदे इजाजत। हसते रहो, स्वस्थ रहो, कने अपने पहाड़ा कने जे असें प्यार बनाए रखा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियां दी तान। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8
1: मेगाहर्ट्ज़ पर। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
5: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
4: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
5: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अपनी ट्यून के FM हमीरपुर आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको बता दें 7:45 होने को हैं और कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों 8 से रात्रि 10 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। इन कार्यक्रमों के दौरान 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और 9 News@9 अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 10 सुनिएगा कार्यक्रम खेल जगत, जिसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और 10:30 पर रोजाना हमारे केंद्र से आप सुनते हैं रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। और अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।
6: पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आसपास के हर वोटर को मतदान

0: प्रेरित करें।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार जारी। पहले चरण के मतदान के लिए 24 व 25 मई को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कर्नाटक स्मार्ट सिटी के सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाएंगे। और प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी, ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। अब समाचार विस्तार से। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर निगम महापौर और सहब कर्मियों के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सहमत मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
3: इनकी डिमांड्स थी, हमने 10% की वृद्धि को भी माना। ईजीएम 4 जून को होने तय हुई है, उसको हम उसमें फाइनल करेंगे। एक डिमांड ये भी आई, जो हमारे कर्मचारी सुपरवाइजर जिनको टर्मिनेशन का लेटर इशू हुआ है, रिमूव किया जाए। उसमें मैंने लिखा है और उसको मिश्र साहब को भी भेजा साथ साथ कि आप इसको जो भी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिमूव भी किया जाए। हमारा एक पारिवारिक एक मसला जिस तरह से होता है, उसको बैठ के हमारी सारी चीजें सॉल्व हुई।
2: दूसरी ओर सहब सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे।
4: जो मेयर साहब के साथ सहमति बनी हुई है कि जो 10% है वो मेयर साहब की तरफ से क्लियर है कि हम देंगे, और इसे जो है एजीएम में ले जाना पड़े। जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो रोड स्वीपिंग स्टाफ है, उनको 4/9/14 नहीं लगता था, उसके लिए भी इन्होंने हम इवर दिया कि वो भी हम जो है इसको कर देंगे। और साथ में स्पेशल लीव जो मिलती थी हमारे 15 डेज की, वो भी जो है इन्होंने हम इवर ही है कि इसको भी हम दोबारा चालू कर देंगे। और जो हमारे 41 लोग टर्मिनेट किए गए हैं, उनको भी जो है मेयर साहब ने यहाँ से लिख के भेज दिया है कमिश्नर साहब को, इनकी सेवाएं जो है कल से शुरू की जाए और कल से जितने भी सहायक कर्मचारी है वो अपने अपने कार्य पे जाएंगे।
2: गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से सफाई कर्मियों के हड़ताल के चलते शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार लगातार जारी है। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। चंबा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले की 319 ग्राम पंचायतों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियों के अलावा मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
0: हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर गांव के अंदर उपस्थित हैं, तो जो पोलिंग पार्टीज हैं जो कि 26 को, 28 को और 30 मई को अपने अपने स्टेशन पे जाके इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगी, तो जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है, साथ में जो हमारे ARO हैं जो कि काउंटिंग के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे, उनकी करंटली जो ट्रेनिंग है वो SDM लेवल पे इम्पार्ट की जा रही है। फाइनल ट्रेनिंग हमारी 24 तारीख को होती है, उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अपना सामान मटेरियल लेके अपने पोलिंग स्टेशन के लिए मूव कर जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पे मतदाता आते हैं, उनके लिए भी जो बेसिक वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज हैं, रैंप की उपलब्धता प्लस बिजली पानी एक्सेट्रा, ये सब भी हर जगह पे सुनिश्चित कर लिया गया है।
2: उधर सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 1641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में आयोजित आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के युग का सूत्रपात किया और पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण भी प्रदान किया।
5: राजीव गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें युवा सोच को मजबूत, उन्होंने युवाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, 18 साल की उम्र के युवा साथियों को वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि लोकतंत्र में वो चाहते थे युवाओं की भागीदारी दिया। उसके बाद महिलाओं को 73वां और 72वां संविधान संशोधन बिल लेकर महिला रिजर्वेशन की बात पर।
2: इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ऑफ स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाए गए मॉडल का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने शहरी विकास क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द ही हिमाचल से शहरी विकास विभाग, नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक में शहरी विकास कार्यों का अध्ययन करने जाएगा और इन कार्यों से प्रेरणा लेकर इसके सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड के लिए केंद्र से प्रस्तावनाएं अनुमोदित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी है और मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऊना आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह हमीरपुर के नेरी में 41, सुंदरनगर में 39.9, मंडी में 38.8, सोलन में 36 और शिमला में 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल 22 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में आगामी 2 दिनों के दौरान आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने रेणुका जी बांध प्रबंधन पर विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांध प्रबंधन ने NGT के आदेशों को दरकिनार करते हुए सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू किया और NGT की शर्तों को भी पूरा नहीं किया। योगेश ठाकुर ने कहा कि रेणुका जी बांध प्रबंधन विस्थापितों पर जबरन कई शर्तों को थोप रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
6: रेणुका बांध में जो हमारे विस्थापित बाई इफेक्टेड जो हो रहे हैं उनके साथ जो है पिछले 17 सालों से अनदेखी की जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि एनजीटी के मापदंडों को जो हमारा बांध प्रबंधक है उसको फॉलो करे, जो भी है कंडीशन है ये इसको हटाया जाए और

0: अर्पित। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कर्नाटक स्मार्ट सिटी के सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाएंगे। और प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी, ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: आपने जून के FM हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आपसे बस थोड़ी ही देर में यानी रात्रि 8 बजे से आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा रात्रि 10 बजे तक। और इन कार्यक्रमों के दौरान 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और 9 बजे News@9 अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 9:15 से आप फिर सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। और रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेल जगत, जिसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। 10:30 पर रोजाना हमारे केंद्र से आप सुनते हैं रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें, तो सुनना ना भूलिएगा ये कार्यक्रम रात 10:30 पर। और देर रात 11 बजे हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित और लिए जाने वाले आज की सभा के शीर्ष कार्यक्रमों का विवरण। इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

हवा महल में आज सुनिए विष्णुदत्त गौड़ का लिखा प्रहसन जान बची। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: श्रीमान जी, आपने मुझे श्रीमान जी कहा? वाह वाह वाह वाह, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई,
1: मुझे भी
0: बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पहली बार मुझे किसी सज्जन महापुरुष ने श्रीमान जी कहा है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ?
1: सुनिए,
0: अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने
1: पागल खाने को।
0: वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह क्या बात है, क्या नुक्ता खींच के मारा है, सारा भेजा बाहर आ गया। लगता है आप शायर हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर कवि हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर आप?
1: जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ।
0: समाज सेवक यानी?
1: कहिएगा नहीं, मेरे दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक।
0: आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: अजी, डॉक्टर को मारिए गोली। पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे।
1: जी?
0: मेरा मतलब है, आप क्या पियेंगे, चाय, काफी, लस्सी, शिकंजी या दूध? निपिल से
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा, तो आप क्या नोश फरमाएंगे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोट?
1: मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
0: ठीक है ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं
1: जी?
0: या अपने रिश्तेदार जी से
1: जी?
0: यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ।
1: लगता है आप?
0: जी, मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे?
1: जी नहीं।
0: बरेली, रांची?
1: जी नहीं।
0: तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा
1: जी,
0: होगा।
1: मैं वहां कभी गया ही नहीं।
0: अच्छा।
1: क्या वहां भी कोटा परमिट मिलता है?
0: अच्छा,
1: रिश्वत कितनी देनी पड़ती?
0: मैं तो यहाँ की बात कर रहा
1: यहां
0: था
1: की। हाँ। मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की, है देखने चला आया हूँ।
0: अच्छा ठीक, चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या
1: क्या
0: घर? मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार
1: जी।
0: मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ पागलखाना। देखिए, यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजी साहब, जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे।
1: अच्छा। हाँ। तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप झुकिए।
1: झुकिए? मगर क्यों झुके साहब? समाज सेवक टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। तालियां तालियां।
0: अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। अबाउट टाइम।
1: ये क्या मजाक है?
0: मजाक? आप इसे मजाक कह रहे हैं? मैं आपसे मजाक करूंगा? मेरा आपका कोई मजाक का रिश्ता है? अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है, अब आप बैठ जाइए।
1: बैठ जाइए?
0: यस।
1: बैठने का क्या मिलेगा, तुम कहते हो तो लो, मैं बैठा जाता हूँ। आप निकालो थैली।
0: गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया।
1: क्यों किया?
0: पूरा वाक्य बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया?
1: आपने ऐसा क्यों किया?
0: ठीक, मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?
0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था, एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा।
1: भागा?
0: मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार
2: जगदेव
0: सो रहा है। पागल ने चौकीदार से नमस्ते की।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। फिर क्या देखता हूं कि वो पागल पागलखाने के बाहर 100 की स्पीड से भागते चला जा रहा है,
1: फिर क्या हुआ?
0: इतने में डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब एक पागल पागलखाने से 100 की स्पीड से भागा है। डॉक्टर साहब 100 की स्पीड से भागा।
3: तुमने उसे भागते हुए देखा?
0: जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा।
3: तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?
0: अरे साहब, मैं उसे कैसे पकड़ता, वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था।
1: गुड, वेरी गुड, आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए, वाकई में आप काफी होशियार।
4: थैंक यू।
1: हाँ तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने क्या प्रोग्राम बनाया था।
4: अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया, और खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहां से एक कार खरीद कर लाएंगे।
1: अच्छा?
4: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
1: अम्मा क्या कह रहे हैं आप?
4: अजी मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब पूरी बात तो सुनिए।
1: सुनाइए।
4: हाँ तो मैं कह क्या रहा था,
1: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
4: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है, यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुंच गए।
1: अच्छा?
4: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। झड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में।
1: अरे बाप रे।
4: अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया।
1: वाह।
4: फिर उसका पेट दबाया।
1: वाह।
4: फिर उल्टा किया।
1: अरे?
4: फिर पेट दबाई।
1: वाह।
4: फिर उल्टा किया। फिर आखिर में उसका गला दबा दिया।
1: क्या बात।
4: और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहां आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे,
5: राम भरोसे
4: जी,
5: तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है?
0: जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था। ये क्या हुआ?
5: समझदार नहीं था? फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?
0: आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था, उसे तो मैंने लटकाया था।
5: तुमने लटकाया था? लेकिन क्यों?
0: साहब भीग गया था, मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था।
1: गुड, वेरी गुड।
4: उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप, उधर मत जाइएगा, उधर के मरीज टुम्मा फेंक कर मारते हैं।
1: अच्छा?
4: हाँ, और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा।
1: क्यों?
4: उधर मरीज काट खाते हैं।
1: अरे बाप रे।
4: और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा।
1: क्यों क्यों?
4: उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया।
1: अच्छा?
4: और वो रही चौथी बैरक, उधर की पागल कभी मर
1: गए,
4: उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े 1 से लेकर 420 तक। अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मेरा नंबर ये देखिए 37 है।
5: नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो।
4: जी
5: तुम फिर आ गए।
4: डॉक्टर साहब मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
5: क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे?
4: मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
5: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है, इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?

0: नाक मोम की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है। आप मेरी नाक काटेंगे कैसे?
0: चक्कू से, चक्कू से, चक्कू से।
1: अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं। आप चुप रहिए
0: जी।
1: हाँ, तो राम भरोसे
0: जी सर,
1: तुम मेरी नाक काटोगे
0: जी।
1: पर भाई, इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ। फिर ये साहब भी बैठे हैं, इनसे बात भी तो करनी है ना।
0: आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं एक घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
1: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, आप अपनी बैरक में जाओ।
0: अच्छा
1: जाओ।
0: थैंक यू सर। साहब को सलाम करेगा परेड, सलाम। एक दो एक,
2: जान बची जान।
0: एक दो एक,
2: जान बची जान।
0: एक दो एक,
2: जान बची जान।

अभी आप सुन रहे थे प्रहसन जान बची, लेखक विष्णुदत्त गौड़, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम चित्रलोक में। मेट्रो इन दिनों इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत।

तेरी बातों में उलझा, ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, रोमी और तनिष बागची की आवाज़ों में, नीरज राजावत ने इसे लिखा था और म्यूज़िक तनिष बागची का था।

ओके जानू, ये था फिल्म का नाम। जॉनिता गांधी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था, A.R. रहमान का संगीत। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती से। चित्रलोक के बाकी के नगमे कुछ पलों में।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत कार्यक्रम चित्रलोक में। कपूर एंड सन्स फिल्म का नाम है, अरमान मलिक अमाल मलिक की आवाजें।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में ये गीत राबता फिल्म से। इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। प्रीतम का संगीत।

फिल्म पंगा से ये गीत शाहिद माल्या और असीस कौर की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत है, जावेद अख्तर ने इसे लिखा।

नमस्कार, समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री

0: अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की

जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े

0: दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad.

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

रूना लैला की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घरौंदा फिल्म से। जयदेव का संगीत था और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आपने आज का ये संगीत का सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

ये है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये नगमे।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: जिन्हें मौका दिया गया। फिल्म थी
1: मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दो दिवसीय अंतर्विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता में पर्यावरण विज्ञान विभाग ने ओवरऑल खिताब जीता है। प्रतियोगिता में पर्यावरण विज्ञान विभाग, फॉरेंसिक विज्ञान विभाग और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने भाग लिया और प्रतियोगिता के तहत एथलेटिक्स, इंडोर खेलों और टीम स्पर्धाओं का आयोजन किया। पर्यावरण विज्ञान विभाग ने लड़कों और लड़कियों के क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, गर्ल्स रस्साकशी और बॉयज रिले दौड़ में जीत दर्ज की। इसके अलावा बैडमिंटन में ओजस और निकिता विजय रहे, जबकि हाई जंप में भी पहला स्थान हासिल किया। लड़कों की 200 मीटर दौड़ में यश जो है वो विजय रहे। फॉरेंसिक विज्ञान विभाग ने बॉयज रस्साकशी प्रतियोगिता जीती और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के गौरव शर्मा ने लड़कों की शतरंज प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि लड़कियों में पूजा विजेता रहीं।

लड़कियों की 100 और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते गए और रिले दौड़ में भी फॉरेंसिक विज्ञान विभाग की टीम विजेता रही। 26 मई को धर्मशाला में होने वाले आईपीएल क्वालिफायर एक मुकाबले को लेकर टिकटों की बिक्री जो है वो शुरू हो गई है। बुधवार शुरू हुई एक्सक्लूसिव टिकट सेल फिलहाल केवल क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है। ये विशेष टिकट बिक्री बुधवार शाम 7 बजे तक लाइव रही और धर्मशाला में होने वाले क्वालिफायर एक मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिला। इसमें सबसे सस्ता टिकट 2,750 रुपये है, वहीं आम लोगों के लिए जनरल टिकट सेल 21 मई को शाम 8 बजे के बाद शुरू होगी, यानी कि आज 8 बजे के बाद शुरू हो चुकी है। बात करें पर्वतारोहण की तो युवा पर्वतारोही रजत ठाकुर उर्फ रजत आईबैक्स ने 17,000 फीट ऊंची प्रसिद्ध फ्रेंडशिप पीक पर 40वीं बार विजय प्राप्त की है और यह सफ़र बेहद संघर्षों से भरा रहा। साल 2011 में उन्होंने पहाड़ों के बीच करियर की पोर्टर के रूप में शुरुआत की थी और उन्हें प्रतिदिन मात्र 175 रुपये मेहनताना मिलता था। छोटी उम्र में ही कठिन मौसम, खतरनाक रास्तों और भारी सामान के बीच काम करते हुए उन्होंने सपनों को जिंदा रखा और लगातार मेहनत, जुनून और हौसले के दम पर आज रजत 156 चोटियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और इनमें से कई जो हैं वो 6,000 से 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियां जो हैं उनमें शामिल हैं। हर चोटी ने उन्हें धैर्य, साहस और कभी हार ना मानने की सीख दी। रजत का कहना है कि फ्रेंडशिप पीक पर 40वीं बार तिरंगा लहराना उनके जीवन के सबसे गर्व भरे पलों में से एक है और उनका सपना है कि वे 100 बार विजय प्राप्त करें और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद रजत को आज तक किसी प्रकार की विशेष सहायता या समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और उनका कहना है कि यदि प्रतिभाशाली हैं अगर युवा तो सही अवसर और सुविधाएं मिले तो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और लोगों को दिया है।

भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम जुलाई में 19 दिन के दौरे पर श्रीलंका जाएगी और श्रीलंका क्रिकेट ने बुधवार को भारतीय टीम को 3 यूथ वनडे और 2-4 दिवसीय यूथ टेस्ट खेलने के लिए आने की घोषणा की। 3 वनडे मैच 4, 6 और 9 जुलाई को हम्बनटोटा में होंगे, जबकि पहला टेस्ट मैच 13 से 16 जुलाई तक गाले में और दूसरा टेस्ट मैच 20 से 23 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। भारत के धैर्य गोगिया ने 33वीं एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पंजुइया में बुधवार को बालक अंडर 13 वर्ग के पहले दौर में हांगकांग के 5वें वरीय को चुन के 11-7 से हरा कर बड़ा उलटफेर किया और वहीं अमार्या बजाज और अभ्युदय अरोड़ा ने भी अपने मैच आसानी से जीते। लड़कियों में रिया दलाल और 5वीं वरीय आलिया कंकरिया ने भी जीत दर्ज की है। भारतीय अमेरिकी गोल्फर मानव शाह ने IGPL के लिए इतिहास रचा जब वह पिछले साल इस लीग की शुरुआत के बाद इस टूर से 2026 अमेरिका ओपन में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 33 साल के मानव ने डलास एथलेटिक क्लब में 36 होल के अंतिम क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 66 और 71 के स्कोर से कुल 5 अंडर के स्कोर से चौथे स्थान पर रहते हुए अमेरिकी ओपन में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब आर्सेनल का आखिरकार 22 साल का इंतजार खत्म हो गया है। 2004 के बाद पहली बार आर्सेनल प्रीमियर लीग चैंपियन बन गया। अंतिम राउंड से पहले

मैनचेस्टर सिटी ने करो या मरो के मैच में बोर्नमाउथ के साथ ड्रॉ खेला और इसके साथ शीर्ष पर चल रही आर्सेनल की अजेय बढ़त 4 अंक की हो गई और खिताब उनके नाम हो गया। जीत की खबर मिलते ही एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर जश्न का माहौल बन गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में सिटी का मुकाबला देख रहे खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। ये आर्सेनल का 14वां प्रीमियर लीग खिताब है। मैनेजर मिकेल आर्टेटा की टीम पिछले 3 सीजन दूसरे स्थान पर रह चुकी थी। आर्टेटा 44 साल की उम्र में प्रीमियर लीग जीतने वाले जोसे मोरिन्हो के बाद दूसरे सबसे युवा कोच बन गए हैं। उन्होंने 2019 में आर्सेनल की कमान संभाली थी। आर्सेनल का ये सीजन शानदार रहा है। प्रीमियर लीग जीत के साथ ही उन्होंने यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट चैंपियंस लीग में भी शानदार प्रदर्शन किया है। क्लब फाइनल में है और अपने पहले खिताब से 1 कदम दूर है। क्लब अब 30 मई को फाइनल में मौजूदा चैंपियंस पीएसजी से भिड़ेगा। आर्सेनल का यह 2006 के बाद चैंपियंस लीग का दूसरा फाइनल होगा। बीसीसीआई ने 2026-2027 के घरेलू सत्र का कार्यक्रम पिछले कल घोषित किया। 23 अगस्त से दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत होगी। रणजी ट्रॉफी फिर से 2 चरणों में खेली जाएगी, जिसका पहला चरण 11 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक और दूसरा चरण 17 जनवरी से 3 मार्च 2027 तक चलेगा। ईरानी कप 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में, मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियंस जम्मू कश्मीर और शेष भारत के बीच खेला जाएगा। 14 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के मैच मुंबई, मोहाली, विजाग और कोलकाता में खेले जाएंगे। 14 दिसंबर 2026 से 8 जनवरी 2027 के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन होगा। खेल जगत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए एफएम हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल जगत आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ईडन गार्डन्स में बुधवार रात के मुकाबले की मुंबई इंडियंस के लिए महज सम्मान बचाने जितनी अहमियत रही, लेकिन प्लेऑफ भी होड में बने रहने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को हर हाल में यह मुकाबला जीतना था। कोलकाता ने शुरुआत भी उसी अंदाज में की और मुंबई के 4 विकेट महज 41 रन के स्कोर पर गिरा दिए। इसमें रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव भी शामिल थे। तभी बारिश की वजह से स्टेडियम में बैठे कोलकाता टीम के हर समर्थक के चेहरे पर मायूसी छा गई। करीब 60 मिनट तक बारिश के कारण खेल थमा रहा, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की अथक मेहनत ने बारिश को मैच में खलनायक नहीं बनने दिया। मैच के दोबारा शुरू होने पर मुंबई को फिर करारा झटका लगा, जब इस सीजन में फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा भी महज 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। खबर लिखने तक हार्दिक पांड्या 21 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि उनके साथ बिल जैक्स

मौजूद रहे। मुंबई का स्कोर 14 ओवर में 5 विकेट पर 84 रन था और टीम अभी भी संकट में थी। भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की रेंज उन्हें अन्य से अलग करती है। वे एक आईपीएल सत्र में सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने का इतिहास रच सकते हैं। कुंबले ने कहा कि बहुत कम बल्लेबाज कवर के ऊपर इतनी आसानी से छक्के मार सकते हैं, पर वैभव ने दिग्विजय राठी के खिलाफ कई बार ऐसा किया। उन्हें खुशी है कि लोगों के पास अब भी ऐसी प्रतिभा के वर्णन को शब्द हैं और उनके पास जो हैं वो शब्द कम पड़ते जा रहे हैं। गुजरात टाइटंस के ओपनर बी साई सुदर्शन ने बुधवार को कहा कि बृहस्पतिवार यानी आज आखिरी आईपीएल लीग मैच में नेट रन रेट के चक्कर में पड़ने के बजाय शीर्ष दो में बने रहने पर ध्यान लगाया गया। सुदर्शन ने कहा कि पहली अहम बात क्रिकेटर खेलकर जीत हासिल करता है और ऐसी स्थिति नहीं है कि उन्हें बड़े अंतर से या बड़ी जीत हासिल करने के बारे में सोचना पड़े। ये चीज़ों को सही तरीके से करने और जीत हासिल करने के बारे में है जो वो कह रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जिस मैच में बल्लेबाजी करने उतरते हैं दो तीन रिकॉर्ड टूट जाते हैं। मंगलवार को लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए 93 रन की तूफानी पारी में भी वैभव ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। महज 15 साल के वैभव जिस गति से हर मैच में छक्के लगा रहे हैं उससे ये कहा जाने लगा है कि वे T20 किंग क्रिस गेल के रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं और सबसे पहले निशाने पर खड़ा एक आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड जिससे वैभव अब महज 6 कदम दूरी पर हैं। क्या वैभव पिछले 14 साल से अटूट गेल का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अब ये जो है वो चर्चा का विषय है। एक ही मैच में बचा हुआ है राजस्थान रॉयल्स का प्लेऑफ से पहले और तीन टीम अड़ी हुई हैं प्लेऑफ में राजस्थान रॉयल्स की राह में। चार टीमें से कोई एक पहुंचती है प्लेऑफ में चौथी टीम के तौर पर और एक ही मौका मिलेगा वैभव को यदि राजस्थान प्लेऑफ में नहीं पहुंची तो।

दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की पहचान खेल के साथ ही फिटनेस प्रेमी के तौर पर भी होती है। कोहली को 37 साल की उम्र में भी मौजूदा समय के सबसे फिट खिलाड़ियों में गिना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि यदि वे होटल में अपने रूम में नहीं हैं तो जिम में मिलेंगे। उनका कहना है कि क्रिकेटर्स का फिटनेस स्तर हॉकी खिलाड़ियों के 15% के बराबर भी नहीं है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के लिए खेल रहे कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की अभूतपूर्व फिटनेस की तारीफ की और उन्होंने आरसीबी इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट के तीसरे संस्करण को संबोधित करते हुए खेलों में फिटनेस को अहमियत पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि वे जानते हैं लोग कई बार फिटनेस को इस तरह लेते हैं कि मानो वे कुछ खास है, लेकिन उनके लिए महज काम की मांग है। क्रिकेट पर उनके देश में इतना ध्यान दिया जाता है कि कई बार दूसरे खेल नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। विराट के शब्दों से हॉकी समुदाय काफ़ी प्रसन्न है और भारतीय हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि उनके शब्द हॉकी के लिए बेहद अहमियत रखते हैं। कुछ समय पहले एक इवेंट में उनकी फिटनेस को लेकर के बहुत अच्छी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि हॉकी बहुत तेज़ खेल है और उनके फिटनेस बेंचमार्क के बारे में जानने के लिए वे उत्सुक थे। उन्होंने ये टेस्ट के बारे में बताया और गोलकीपर भी 20 से ज़्यादा स्कोर करते हैं और वो हैरान रह गए। पूर्व हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि विराट कोहली का उनकी मेहनत और फिटनेस स्टैंडर्ड को ध्यान में लाना बहुत बड़ी बात है और उनके लिए ये बहुत आभारी भी हैं। बात करें अगर शटलर की तो शटलर भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन और HS प्रणय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में हार कर बाहर हो गए हैं। महिला वर्ग में मालविका बंसोड़ और अश्मिता चलिहा ने जीत दर्ज कर दूसरे दौर में जगह बनाई है और मिश्रित युगल में सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा की जोड़ी ने स्कॉटलैंड की अलेक्जेंडर डन और जूली मैकफर्सन की जोड़ी को 16-12, 16-21, 21-14, 21-18 से हराया। लक्ष्य को इंडोनेशिया के जैकी उबैदिल्ला ने से 17-21, 11-21 से प्रणय को जापान के कोडाई नराओका से 17-21, 22-20 और 22-24 से हार मिली। मालविका ने जर्मनी की योविन ली पर 21-17, 16-21 और 21-9 से। अश्मिता ने इंडोनेशिया की तलिता को 21-16, 21-13 से हराया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ घर पर टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को पछाड़ दिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश 5वें स्थान पर पहुंच गया और भारत 6 स्थान पर खिसक गया। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट 78 रन से जीता और स्पिनर तेजुल इस्लाम ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर पाकिस्तान को 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 पर समेट दिया। रिजवान, सलमान आगा और शान के प्रयास के बावजूद पाकिस्तान जीत नहीं पाया। लिटन दास को 126 और 69 रन की पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 104 रन से जीता था और शांतो ने बतौर कप्तान 8 टेस्ट जीते, जिससे वे बांग्लादेश के सबसे सफल कप्तान बन गए। WTC चक्र में भारत ने इस साल अब तक मैच नहीं खेला और टीम जून में अफगानिस्तान से एक मैच खेलेगी जो चक्र का हिस्सा नहीं है। फिर श्रीलंका, न्यूजीलैंड के दौरे पर 2-2 टेस्ट खेलेगी।

तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ले लेते हैं एक ब्रेक, म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल जगत।

और इसी गीत के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब ट्यून के FM हमीरपुर आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 MHz पर। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक रात के 10:30 हुए हैं और बिल्कुल हम आपके रेडियो सेट पर लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम चांदनी रात। आइए शुरुआत करते हैं मोहब्बत भरे इस खूबसूरत से सफर की। और सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये गीत। जी हाँ, बिल्कुल कुछ नया सा लगता है, कायनात खूबसूरत सी नजर आने लगती है, ये सारे नजारे हसीन लगने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि मोहब्बत खूबसूरत से रंग भर गई है इन हसीन फिजाओं में।

मोहब्बत जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। इसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना बहुत ही मुश्किल है, और लफ्ज मिल भी जाएं तो फिर सोचते हैं कि खत लिखें ना लिखें, क्योंकि कई बार बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिनसे बात ना हो तब भी एहसास साथ रहता है हमेशा, और शायद मोहब्बत यही है जो दूर रहकर भी दिल के सबसे पास रहती है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांद निरादें आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। मोहब्बत सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं बल्कि किसी की खुशी में खुद की खुशी ढूंढ लेने का एहसास है। कभी एक मुस्कान में मोहब्बत छुपी होती है तो कभी किसी की खामोशी में।

0: इसी के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त मधु को आज का ये प्रोग्राम चांद इरादे यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। कल एक नए अंदाज में लेकर आएंगे 10:30 पर आपका चहेता कार्यक्रम चांद इरादे। फिलहाल आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। अपने ट्यून के FM हमीरपुर आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 MHz पर 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए